मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज सोमवार है।

0: हम आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद

0: पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayshankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why their counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global

वंदना कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन सचदेवा की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए शिवदयाल शर्मा से।
1: जीवन के सिद्धांत। जीवन में कुछ बातें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए।

0: सिद्धांतों पर चलना मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। अथवा सिद्धांतों पर चलकर दुनिया से हारना झूठ के दम पर जीतने से कई गुना बेहतर है। जीवन में हार या जीत से भी बढ़कर कोई चीज महत्वपूर्ण है तो वह आपके सिद्धांत है, मानवीय मूल्य है। सिद्धांत अर्थात सच्चाई का रास्ता, श्रेष्ठता का पथ और सच्ची मानवता जो आदर्शवादिता एवं शास्त्रानुकूल परिपथ है। जितने भी हमारे महापुरुष और दार्शनिक हुए हैं उनकी महानता के पीछे बस एक ही कारण था कि उन्होंने जीतने के बजाय हारना स्वीकार किया, परंतु अपने सिद्धांतों का परित्याग कभी नहीं किया। भले ही वे कम बोलते थे मगर सटीक और नपे तुले शब्द जो सत्य हो वही बोलते थे, क्योंकि कम बोलना कोई अज्ञानता नहीं है, बल्कि जितने भी महापुरुष हुए हैं वे मितभाषी ही हुए हैं। पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं, यानी बचपन से ही उनका कम बोलने का स्वभाव होता है। इसका एक सर्वमान्य सिद्धांत है, संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, मही यांसः प्रकृत्या मितभाषिणः, अर्थात महान व्यक्ति स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए सत्य का मार्ग सुगम तो नहीं होता, निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट जरूर होता है। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, कदम कदम पर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर इन सब के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रत्येक जुबान पर आपके ही किस्से होंगे। अतः सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि हमारे सिद्धांत पूर्ण रूप से मानवीय मूल्यों अथवा वेद शास्त्रों पर आधारित है तो हम जान सकते हैं कि हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसको सृष्टिकर्ता ने हमारे लिए ही बनाया है। हम उस अर्थ को समझ सकेंगे, न कि अपने मतलब के अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे। हम जितना अधिक सच्चे सिद्धांत का मनन और चिंतन करेंगे उतना ही परा अपरा शक्ति को पहचान भी सकेंगे। अतः यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आप सिद्धांतवादी हैं तो जीत से भी ज्यादा चर्चे तो आपकी हार के होंगे। उदाहरण से हम विचार करें तो पाएंगे कि महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि इस बात का जीता जागता प्रमाण है। सिद्धांतवादी होने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अपने नियमों मूल्यों का पालन करता है और अपनी प्रत्येक क्रिया के प्रति सतर्क और ईमानदार रहता है। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सिद्धांतों के माध्यम से व्यक्ति सच्चा एवं जिम्मेदार जीवन जी सकता है। अतः व्यक्ति के सिद्धांतवादी होने या न होने की आवश्यकता समुचित रूप से उसके व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, मान्यताओं और जीवन दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। सिद्धांतवाद व्यक्ति के विचार और मूल्यों के प्रति उसके गहरे या स्थायी विश्वास का प्रतीक होता है, जो उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। अतः सिद्धांतवादी व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में देर से ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। सिद्धांतवादी होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस जीवन में सिद्धांत नहीं वह जीवन कभी भी श्रेष्ठ एवं एक आदर्श नहीं कहा जा सकता। जीने को तो पशु भी अपना जीवन यापन करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना तो वे भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात कोई सिद्धांत या नियम नहीं है तो मनुष्य पशु तुल्य है।
1: अभी आपने शिवदयाल शर्मा से चिंतन सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा जैविक मित्र फंड। खेत खलिहान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे ग्वार की उन्नत किस्में विषय पर। चौपाल में संध्या 7:00 जानकारी के विषय रहेंगे अंतराशस्य मिलवा खेती, चूहा नियंत्रण कैसे करें, एकीकृत नासी जीव प्रबंधन, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, गीत भी सुनवाए जाएंगे। लोक भजन आप सुन सकते हैं 7:15 पर। मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे कालूराम प्रजापत। मानस गान आप सुना करते हैं 7:20 पर, भाग संख्या होगी 254। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, दिन में 2:30, संध्या 7:45 और रात 10:30। आज के फनकार ये कार्यक्रम होगा 10:00। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे दिन में 11:00। सैनिकों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 12:05 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:00। 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। युववाणी में शाम 5:00 चर्चा के विषय रहेंगे देश, ऊर्जा, युवा प्रतिभा, वायु प्रदूषण, साहित्य, समाज का दर्पण, मिशन लाइफ, आज का इतिहास विषय पर भी जानकारी दी जाएगी। फिल्मी गीत भी सुनवाए जाएंगे। सरायके का समय रहेगा 6:05। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर और रात 9:15 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3:00। स्पोर्ट्स कैन रात 8:30 पर और पब्लिक स्पीक रात 9:30 पर। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार तरंग 8:45 पर हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर, अमेरिका देशीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारतामेरिका रणनीतिक सहभागितां भूयः अपि दृढयितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में

0: गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring

किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपा जिता रासायनिक खाद को उपयोग करा तो बीन शू क्या है जितों आप ज़्यादा उपयोग करा तो असंतुलन होने के कारण अपनी भूमि की संरचना जी कमज़ोर पड़ गई या कह सकें भूमि जी उत्पादन कम देने लग गई। तो इंगा कारण वही है कि ज़्यादा आप रासायनिक खादों का उपयोग करा तो बीन शू क्या है बार बार बंगी भूमि की संरचना जी कमज़ोर पड़ गई। तो इन्हें सही रखने वास्ते आपने जैविक खादों को जो है वो प्रयोग करना चाहिए जैसे शू कह गए प्रमुख पोषक तत्वों के सागे सागे गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाए। इनके खातर जैविक खादों को प्रयोग करने रहने से गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या उत्पन्न को नहीं हुआ। पोषक तत्वों की पूर्ति के अलावा जैविक खादों का कई लाभ है। जैविक खादों के उपयोग में रासायनिक खाद को नकारात्मक परिस्थितिक प्रभाव ने भी कम करो जा सके। इनके उपयोग से मिट्टी की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाए। इनको मूल्यांकन मिट्टी के भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों से आसानी से आप कर सकें। जैविक खादों के उपयोग से मिट्टी की पोषक तत्वों की धारण तथा पूर्ति करने की क्षमता जबकि बढ़ जाए। इनके सागे जल शोषण है जल धारण क्षमता में वृद्धि और सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाए। तो इन हिसाब अपने जैविक खादों को उपयोग है जो करना चाहिए। कई जैविक खादें जहाँ गोबर की खाद है कंपोस्ट खाद है वर्मी कंपोस्ट खाद है हरी खाद जीवाणु खाद और खड़ी की खाद। या गोबर की खाद की बात करें तो घरेलू पशु है जो अपने कने गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट आंगा ठोस है द्रव मल मूत्र शू या बिछावन शू बन एक गड्ढे में सड़ाकर अच्छी तरह तैयार करे पदार्थ ने गोबर की खाद कहे है। इनमें लगभग सगड़ा ही आवश्यक पोषक तत्व है। पूरी तरह शू सड़े गोबर की खाद में 0.5 लेके 1% तक नाइट्रोजन 0.4 लेके 0.8% तक फास्फोरस 0.5 लेके 1.3% तक पोटाश है 40 PPM जस्तो 2.8 PPM तांबो 1.46 PPM लो और 61 PPM मैंगनीज पायो जाए। इनके प्रयोग से भूमि की भौतिक रासायनिक और जैविक संरचना में भी सुधार हुआ है। किसान भाई कंपोस्ट खाद की बात करा तो खरपतवार है फसल का अवशेष है पशुओं को बचोड़ो चारो पेड़ पौधों की पत्तियां कूड़ो करकट अन्य कार्बनिक कचरो अन्य सड़ाकर कंपोस्ट खाद तैयार करी जाए। इनमें 0.4 लेके 0.8% तक नाइट्रोजन 0.3 लेके 0.6% तक फास्फोरस 0.7 लेके 1% तक पोटाश पायोजर खेत में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहला मिट्टी में डालकर आपने मिला देना चाहिए। बर्मी कंपोस्ट की बात करें तो केंचुओं कृषि अवशिष्टा ने पचा के उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाए जका वर्मी कंपोस्ट के अलावा है। प्रकृति ने केंचुआ ने इसी अद्भुत क्षमता प्रदान करी है कि आपके बाहर से ज्यादा मलमूत्र त्याग कर उत्कृष्ट टीका वर्मी कंपोस्ट बनावे। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 लेके 3% तक नाइट्रोजन 1.5 लेके 2% तक फास्फोरस और 1.5 लेके 2% तक पोटाश की मात्रा जगह पाई जाए। इंगा एंटीबायोटिक गुणा से फसल में कीट है रोग है बांगे प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाए। इंगे अतिरिक्त वर्मी कंपोस्ट में शुष्क पोषक तत्व संतुलन मात्रा में और एंजाइम और विटामिन भी इनमें पाए जाए। हरी खाद की बात करें तो दलहनी है या अदलहनी फसलों ने हरी खाद में मृदा में जीवांश पदार्थ और पोषक तत्वों की पूर्ति के बढ़ावन खातर फसल ने मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया नहीं हरी खाद कहवे। हरी खाद के प्रयोग से मृदा की भौतिक रासायनिक और जैविक दशाओं पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इनके प्रयोग से भूमि में पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले मृदा की जल धारण क्षमता और कणाकार संरचना जबकि बढ़ जाए। हरी खाद के रूप में प्रयोग करने वाली मुख्य फसलें जहाँ ढेंचो है सनेही है ग्वार है ए है। जीवाणु खाद की बात करा तो यह फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति खातर अत्यंत प्राकृतिक सस्ता और आसानी से प्रयोग करे जाने वाला खाद है। इनकी उत्पादन लागत रासायनिक खादों की तुलना में कई गुणा कम हुआ है। जहाँ राइजोबियम जीवाणु दाणा के सागे मिलकर लगभग 100 से 300 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर तक उपलब्ध करवा है। एजेक्टोवेक्टर अब एक बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। फास्फोरस घोलक जीवाणु भूमि में उपस्थित ए गुलनशील फास्फोरस ने गुलनशील अवस्था में लियागे पौधों के लिए उपलब्ध करावे बन योग्य बनावे। खड़ी की बात करा तो तिलहनी तेल से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ बचड़ो है बिने खड़ी के और इंगे शु खेत में खाद के रूप में प्रयोग करो जाए। खड़ी में नाइट्रोजन को प्रतिशत गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद की तुलना में क्यों ज्यादा हुआ है। पोषक तत्वों की मात्रा खड़ियों की प्रकृति पर निर्भर करे। अरंडी की खड़ी में 4.4%, नीम की खड़ी में 5.2% और सूरजमुखी की खड़ी में 7

0: 90% तक नत्रजन मिले है। इंगे सागे सागे फास्फोरस है, पोटास है, बेंगी भी मात्रा मिले है। खड़िया पोषक तत्वों की पूर्ति खातर जैविक खादों की श्रेणी में आज किसान भाइयों अब हूँ खेत का नहीं चालू। राम राम सा राम राम।
1: खेती रवास्ते कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे जैविक खादों का महत्व विषय पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन कलाकार हैं भगत सही राम।

अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कलाकार थे भगत सहीराम। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 254।

उधर दशरथ पुत्रों से, चाहे वे भगवान के अवतार भी हों, लोहा लेने का निश्चय करके रावण मारीच के पास पहुंचता है और इधर श्रीराम जनक नंदिनी पर मनुष्य लीला करने का अपना मंतव्य प्रकट करते हैं। जब तक रावण का विनाश न हो जाए, सीता अग्निदेव की शरण चली जाती हैं।

ओपन यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें छोटी छोटी खुशियां हमें जीने का सहारा देती हैं। इच्छाएं तो पल पल बदलती रहती हैं। हमारे पास पहले से मौजूद साधारण चीज़ों का आनंद लेने के बजाय अधिक इच्छा करना हमें खुशियों से दूर कर सकता है। लक्ष्य और सपने निश्चित रूप से फायदेमंद होते हैं, लेकिन अधिक इच्छा हमें असंतुष्ट कर सकती है और वर्तमान की खुशी को हम खो देते हैं। इसलिए हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। बड़ी इच्छाओं की पूर्ति हमारे जीवन में कभी कभी होती है, लेकिन छोटी छोटी खुशियां हमारे जीवन में आती ही रहती हैं। उन खुशियों से हम जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। हमारे पास अगर कुछ नहीं है और हम सारा ध्यान उसी पर लगा देते हैं, तो जो हमारे पास मौजूद है उस खुशी को भी हम खो देते हैं। भंवरे का गुंजन, पक्षियों का कलरव, बच्चों की किलकारी, उनके खुशी से भरे चेहरे, रिमझिम बारिश और फिर धरती की खुशबू, ठंडी हवा, ये सब बातें भी हमें खुशी देती हैं।

दोस्तों, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने और कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को विकसित करने और उन्हें आधुनिक बाजार की ज़रूरतों के अनुसार ढालने में मदद करना है। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किया जाता है। इस योजना के द्वारा शिल्प उत्सवों और प्रदर्शनियों के माध्यम से डिज़ाइन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सहायता की जाती है। इस योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा भी सहायता दी जाती है। यह योजना न केवल पारंपरिक कला शिल्प को संरक्षित करती है, बल्कि कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद करती है। इससे अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी जोड़ा जाता है।

सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में जीव जंतु पेड़ पौधे सभी के संरक्षण की बात कही गई है। संसार के प्रत्येक जीव का अपना महत्व है, प्रत्येक जीव प्रकृति के संचालन में सहायक होता है। मनुष्य संसार का बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य का ही दायित्व है कि वह जीवों का संरक्षण करे और उन पर दया करे। प्रत्येक जीव को इस धरती पर जीने का अधिकार है, मनुष्य का जीवों के प्रति सहयोगात्मक रुख होना चाहिए, यह हमारी प्रकृति के संचालन के लिए भी जरूरी है। बहुत से लोग अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव को बंधक बनाते हैं, जीव अपनी आज़ादी से कहीं भी घूमने के लिए या आसमान में उड़ने के लिए जा सकता है, हमें उन्हें अनावश्यक रूप से बंधक नहीं बनाना चाहिए। बहुत से जीव जंतु ऐसे भी होते हैं जो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और हमें चाहिए कि उनकी हर तरह से रक्षा करें और उन पर दया करें, उनका इलाज करवाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। कुछ ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से जीवों को परेशान करते हैं, यातनाएं भी देते हैं, उन्हें ऐसा न करके जीवों पर दया करनी चाहिए।

सुप्रभात कार्यक्रम में अब सुनिए मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और साथियों की हैं।

सुप्रभात कार्यक्रम के आखिर में सुनिए विधाता फिल्म का गीत, आवाज़ें सुरेश वाडेकर और अनवर की हैं।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म

0: ट्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडप में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी।

0: है हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति। हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार। फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं।

0: पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ़ में दिए जाते हैं, जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएँ, समाजी काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और ज़िंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांगशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम ने कहा कि इस जीत से BJP के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अज़म का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में BJP कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। ये इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल की कीमत 95.20 रुपये फ़ी लीटर होगी। इम्तहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। NTA ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। NTA ने उम्मीदवारों को ताज़ा जानकारी के लिए उसकी बाज़ाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तहानात के जवाबात के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसीख कर दी है, जो कल तक थी। CBSE ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तहान के पर्चों को दोबारा जाँचने के अमल

की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। ये फैसला CBSE के नतीज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि IITs के माहिरीन की यह टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नीज़ ख़ास तौर पर इम्तहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकज़ी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। ये बातचीत CBSE के बाद के नतीज और जवाबात के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान ये फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE को इसकी अदायगी के निज़ाम और इम्तहानात के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को ख़त्म करने और दुनिया को मज़ीद मौके फराहम करने में है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकत दार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफ़ीर सर्गियो गोर को फ़ोन किया। उन्होंने ये फ़ोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आज़ादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ख़ुद को वज़ीर आज़म मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफ़ीर ने अपने फ़ोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफ़ीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह रायजनी अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोज़ा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वज़ीर आज़म मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतज़ामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतज़ामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई माहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा माहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये माहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए माहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोज़ा मनासिक हज का आगाज़ हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब में मक्का मौज़मा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क़याम के बाद कल सुबह वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आज़मीन फरीज़ हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर

0: एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर कस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के एडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म होता है।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समाचार तरंग कार्यक्रम अब हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: श्रोताओ, मैं रितिका गुप्ता
1: और मैं माधुरी वशिष्ठ
0: इस बार के अंक में लेकर आए हैं हफ्ते भर की सुर्खियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहे, कई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात दी।
1: जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आयोजित रोजगार मेलों में 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
0: राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, सरकार पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित।
0: स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहे, अपने प्रवास के पहले दिन उन्होंने जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। इसके बाद श्री वैष्णव ने जालौर से भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम

0: मिली है और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं, 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा, ये मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीलड़ी की डबलिंग, आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
1: देश भर में आयोजित हुए रोजगार मेले के तहत प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थीं, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
2: आप जब भी कोई फैसला लें तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित भारत बनाएगी।
3: जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
4: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिवकुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
5: आज समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन समाज की आवश्यकता ये है, भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल की, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां देश और समाज के लिए।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
6: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई, साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी और पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को भी मंजूरी दी है। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
7: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था,

0: ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो दे सकते।
1: राजस्थान विधानसभा की स्थापना के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा परिसर में आयोजित विशेष समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इस नए लोगो को लॉन्च किया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा की चारों ऐतिहासिक द्वारों के नामकरण की पट्टिकाओं का भी अनावरण किया गया है। इन प्रवेश द्वारों को राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
2: चौरे द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार। ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार पांच द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
3: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पिछले हफ्ते आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
4: जो जयपुर का इतिहास है, आमेर किले में रहता है, आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है शासकीय में, और हाल ही में दो दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट हूँ।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनीकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
5: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाएं।
3: सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
6: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम कुश्तला का रहने वाला हूं, और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी 4 हेक्टर जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपये प्रीमियम दिया और 112,260 रुपये मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें, और जो फसल है जिसकी का बीमा कराएं। धन्यवाद सर।
7: किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूं, और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं, और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
1: हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक

0: पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन की साझा प्रयासों से कैथुन कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी। हमारे कोटा संवाददाता आशीष मेहता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
1: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथुन के पीटलुम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहाँ पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा।
0: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार गोडावण

0: ये स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
1: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथून के पीटलुम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहाँ पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा।
0: राज्य पक्षी गोडावण की संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिश से इस विलुप्त प्राय पक्षी गोडावण के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
2: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा, गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का काम करेगा।
0: वन मंत्री ने गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
3: समाचार तरंग में बस इतना ही, एक अन्य अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के दो दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की तीन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दो दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृह मंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता

0: यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4,938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपूतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेड और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3,427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 725 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पानी चोरी और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण

0: 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि से विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा, वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा, वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही, वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं कालूराम प्रजापत।

मरुमंगल कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कालूराम प्रजापत को। यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

मोरमंगल में अभी आप काळूराम प्रजापत को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं लता की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है स्वीकार किया मैंने।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: लीजिए अब सुनिए जंजीर फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं।
1: जगह मिल जाए

ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं गॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब सुनिए अभिलाषा फिल्म का नगमा, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार।

आज की फनकार सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज संगीतकार लक्ष्मीकांत की पुण्यतिथि है। आज हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल पर आपको प्रोग्राम सुनवा रहे हैं। हिंदी सिनेमा की सबसे सफल संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने लगभग 4 दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया। 1963 से 1998 के बीच इस जोड़ी ने 600 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उनकी धुनों में अनोखा मेलोडियन और कर्णप्रिय तालमेल था, जिसे हम आज भी गुनगुनाते हैं।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, लक्ष्मीकांत का जन्म मुंबई के एक निमन परिवार में हुआ था। जन्म के दिन दिवाली और लक्ष्मी पूजन होने के कारण इनका नाम लक्ष्मीकांत रखा गया। बचपन में ही पिता का निधन हो जाने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।

संगीतकार प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को मुंबई में एक संगीतकार परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा एक मशहूर तुरही वादक थे। प्यारेलाल जी ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही वायलिन सीखना शुरू कर दिया था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण प्यारेलाल 12 वर्ष की उम्र में स्टूडियो में वायलिन बजाते थे। उसी दौरान एक रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में उनकी मुलाकात लक्ष्मीकांत से हुई। दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए और कई बड़े संगीतकारों जैसे नौशाद, मदन मोहन और एस डी बर्मन के साथ वायलिन वादक के रूप में काम किया।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 1963 में फिल्म पारसमणि में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में डेब्यू किया, जो सुपरहिट रही। फिल्म के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

इनकी पहली संगीतमय हिट फिल्म जिसमें स्टार कलाकार थे आए दिन बाहर के लिए रिलीज हुई और इसके बाद प्यार किए जा रिलीज हुई। आइए सुनिए प्यार किए जा फिल्म का ये गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। दोस्ती 1964, मिलन 1967, जीने की राह 1969, अमर अकबर एंड धनी 1977, सत्यम शिवम सुंदरम 1978, सरगम 1980 और कर्ज 1981। 1993 में इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा प्यारेलाल जी को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।

आज की फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आज के हमारे फनकार हैं संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ऐसा नाम जिसे हिंदी फिल्म संगीत या हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। यह नाम हिट फिल्म संगीत के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है जो 1963 से लेकर सदी के अंत तक लगातार लोकप्रिय रहा।

लता जी कैबरे टाइप गीत गाने से परहेज करती थी। 1969 में फिल्म इंतकाम के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी लता जी से मिले। उनको पता था कि इस तरह के गीत लता जी नहीं गाती हैं, उनको राजी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लता जी ने ये शर्त रखी कि गीत के बोल साफ सुथरे होने चाहिए। लता जी ने इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज़ में रिकॉर्ड किया। सबको यही लगता था कि यह गीत आशा जी ने

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने कमाल के गाने दिए। उनके संगीत का अहम हिस्सा था गानों में साजों का इस्तेमाल। वो सिर्फ धुन नहीं बनाते थे, पूरा माहौल रचते थे। मुखड़े और अंतरे के बीच का संगीत वो भी कहानी कहता था। वो सिर्फ फिलर नहीं होता था, बहुत सोचा समझा जटिल अरेंजमेंट होता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कहानी के मूड को पकड़ते थे, यही उनके गाने को गहराई भी देता था। इस हुनर को पहचान भी मिली, उन्होंने अनेकों सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया।

25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत के निधन के बाद इस जादुई जोड़ी का सफ़र थम गया। प्यारेलाल ने इसके बाद फिल्मों में सक्रिय रूप से काम करना बंद कर दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिया गया मधुर संगीत हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अपनापन फिल्म का गीत। आप सुने ये गीत और अपने दोस्त को दे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आज का आज के फनकार कार्यक्रम पेश किया मनोज शर्मा ने।

आज के फनकार थे महान संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बज चुके हैं। कार्यक्रम सुने गीत बहार।

गीत बहार कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से आपकी फरमाइश के गीतों के साथ, आपके संदेशों के साथ, आपके ख़तों के साथ हम हाजिर हैं आपका प्रोग्राम गीत बहार लेकर। दोस्तों, आज दो महान फनकारों का दिन है, अदाकार सुनील दत्त और साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडालकर, इनका दिन है। इन दोनों महान फनकारों की आज बरसी है, हम इनको याद करते हैं और आपको पहला गाना सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में नागिन फिल्म से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की है और ये गाना फिल्माया गया है सुनील दत्त पर। रेखा इनके साथ, सुनील दत्त की भी आज बरसी है, तो आपको हम ये गाना कार्यक्रम के आगाज़ में सुनवाते हैं, उसके बाद आपके संदेश और आपके ख़त। दोस्तों, आज मशहूर शायर दाग दहलवी की भी जयंती है, इनको भी हम याद करते हैं और गाना हम आपको सुनवाते हैं चंद अल्फाज के साथ कि दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, दिल गया तुमने लिया हम क्या करें, जाने वाली चीज़ का गम क्या करें, और मारका है आज हुस्न और इश्क का, मारका है आज हुस्न और इश्क का, देखिए वो क्या करें और हम क्या करें।

श्रोताओं, प्रोग्राम के आगाज में आप सुन रहे थे ये दो गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म थी नागिन और इस गाने की फरमाइश हम तक पहुंची। आप हैं खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा। बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से लिखते हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये संदेश मिला है नाई वाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा की तरफ से। फरमाइश करते हैं बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके बहुत से साथी। आप हैं सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। यही गाना हमने आपको भी सुनवाया। आप लिखते हैं अनिल मानसी गौरव, कविता अरोड़ा, मोती नगर नई दिल्ली से आपने संदेश भेजा है। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और नियमित आहूजा। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार और आपके बहुत से साथी। घमंडिया से लिखते हैं जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति सरिता, तमन्ना, सचिन विष्णु, शिवम ढूकिया, ईवा धारणिया। ये संदेश मिला है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की तरफ से। यही गाना हमने आपको भी सुनवाया। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। ये संदेश मिला है पलेरा टीकमगढ़ से, लिखते हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा की तरफ से। पवन कटारिया, शालू कटारिया और समीर कटारिया। आप हैं श्री करणपुर से और मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर श्रीगंगानगर से आप लिखते हैं। और ये संदेश पद्मा टॉकीज नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। आप सबने अपनी फरमाइश का ये गाना सुन लिया होगा। अगला गाना हम सुनवाते हैं आप सभी दोस्तों को। आप हैं ज्योति नगर नोखा से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गोरी, हसन सिक्का। दतरंगी भाटापारा से छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। और बक्सर विहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। ये संदेश मिला है व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही की तरफ से। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर।

शाही महराज जहाँ आप लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मुजफ्फरनगर यूपी से लिखते हैं रेनू शर्मा, विशेष शर्मा, रुद्र शर्मा और वंदना शर्मा। और आप हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी। यह संदेश मिला है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा सबिश्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी की तरफ से। आप लिखते हैं मुंगीसापुर मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब। और ये संदेश लोहेडी महोबा से लिखने वाले हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागिनी रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक आपके साथ में हैं। और चंद्रेश गोहर का संदेश पहुंचा है विद्यालय नगर MP से। साथ में हैं श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर और जयपाल यादव। हीरावाली फाजिलका से लिखते हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशी गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनी राम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल। और यह संदेश है आपने लिखा है जगमोहन प्रजापति और प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, सोनिया, किरण ठाकुर। आपने लिखा है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, साथ में है संदीप गुगलानी भी है। आपसे निवेदन है कि आप संदेश अगर हिंदी में लिखेंगे तो आपके नाम का उच्चारण सही तरीके से हो पाएगा। और आप हैं सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। आप सबको हम सुनवाना चाहते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

दोस्तों, हमने आपको सुनील दत्त और आशा पारेख की फिल्म का गाना सुनवाया। फिल्म थी हीरा, आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। अगला गाना हम सुनवाते हैं आप सभी दोस्तों को। संदेश पहुँचे हैं, आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी और इनके बहुत से साथी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। नाईवाला से, हनुमानगढ़ से डॉक्टर गौरव कंडियारा, लड्डू कंडियारा, मन्नू कंडियारा। और चकमोड़ी पंजाब से अन्नू घारू, गगन घारू। राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग मंडी डबवाली से। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल। अरायण से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, बजरंग शर्मा। आप लिखते हैं दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। सूर्य नगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष। धनोरी तेलीवाला से, उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। जैसला फलौदी से संदेश मिला है राजा राम, जंवर बिश्नोई और इनके परिवार के लोगों का। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से लिखते हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। और आपने संदेश भेजा है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। आपके साथ चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। संगरिया से श्याम मिड्ढा, सुमन मिड्ढा। और आप लिखते हैं उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवन्यम और अनु गोस्वामी। ये संदेश मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला, विशाल नवाकर और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष महरकर। और बाबा पट्टी बलिया से कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा से गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं आपके लिए ये गाना, सुनिए।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, चूंकि संगीतकार लक्ष्मीकांत का दिन है, उनका संगीतबद्ध किया ये गाना आप सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और लता की आवाज़ में। ये फिल्म है इंतकाम, सुने।

दोस्तों आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में इंतकाम फ़िल्म का ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना। अगला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं, आप हमारे साथी हैं, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया, जालंधर से। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नशरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, आप लिखते हैं मोहल्ला

0: अलवायान, शेरकोट, बिजनौर से, और बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि गर्ग, शिल्पा गर्ग। यह संदेश मिला है कासम कॉलोनी सनावद से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीश खत्री, नूरू मीना, इरफान मीना, कासिफ मीना की तरफ से। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। टोरोवाल नवा शहर पंजाब से आप लिखते हैं, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी आपके साथ है। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और साथ में डब्बू। आप लिखते हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, और आप हैं हमारे साथी हनुमानगढ़ टाउन से। रूपनगर से आप लिखते हैं रज्जाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान और इनके परिवार के लोग। बांडीवाला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। जोगीवाला से लिखते हैं प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत बद किया हुआ ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुनिए।
1: मैं तुझे प्यार कर

दोस्तों, आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में प्रेम कहानी फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना सुना। गीत बहार कार्यक्रम आपकी फरमाइश पर और हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अदाकार सुनील दत्त और लक्ष्मीकांत संगीतकार की याद में उन्हीं के मिले जुले नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं। अगला गाना हम आपको सुनवा देते हैं सुनील दत्त और रेखा की फिल्म राम कसम से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है। गाना आपके लिए आ रहा है। आप हैं हमारे साथी बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिशा कुश मूणत, बहलोल नगर से झोरड़ फॉर्म हाउस से लिखते हैं नरेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश झोरड़, गौरव झोरड़, पुनीता झोरड़, आरवी झोरड़। ये संदेश मिला है गांधीनगर गुजरात से पी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल और हर्ष, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, प्राग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन। और आप हमारे साथी हैं शाजापुर से, आप लिखते हैं मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन कमल उमेश, सरोज आरती रेखा, रितिका ऋचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और इनका परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा वर्मा और खारिया सिरसा से लिखते हैं प्रताप जनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। आप हैं जाखोद से शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। सिरटे सांगली से आप लिखते हैं हनुमंत शिंदे, संगीता शिंदे, ऋषिकेश और वसुंधरा। आप हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। गांव न्योला रामपुरा से लिखने वाले हमारे साथी है सुरेंद्र डीडन, सकीला डीडन, संदीप अनवर, अक्कू बावरा और राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। आप सब लिखते हैं राज प्लस मऊनाथ भंजन यूपी से। बनवाला हनुमंता फाजिलका से लिखते हैं विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और मायल परिवार। ये संदेश मिला है चक 6 MSR अनूपगढ़ से रमेश कुमार और समीर की तरफ से। ये गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़ और नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़।

कृष्ण मुकेश रामचंद्र हिमानी जाखड़ कपिल देव तरड़ आप सभी के लिए आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना, सुनिए।

आपने राम कसम फिल्म का ये दो गाना सुना, और अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में चाचा भतीजा फिल्म का गाना। आवाज़ें एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है, और इस गाने को पसंद किया हमारे साथी हैं जिनको हम सुनवाते हैं, विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ू राम जोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल शर्मा। कलाना भादरा से आप लिखते हैं, और अनूप शहर से आप लिखते हैं गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, डिंपल, इंसान, और साथ में हैं हमारे बिलाई गढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। आपका संदेश मिला, और ये संदेश मिला है मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से लिखते हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। और ये संदेश है नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल। ये गाना हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। आप हैं नोहर हनुमानगढ़ से, नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु, पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, आपके साथ फेफाना से जय सिंह धामू और मदन सुथार। ये संदेश मिला है रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, और चक 6 MSR से कृष्ण टेलर, गणपत टेलर, रमेश कुमार, मोहला चौखंडी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी और अरजान अबान अब्बासी और इनका परिवार। सिद्धार्थ नगर दरियापुर से आप लिखते हैं बाभली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अशोक येले। फाजिलका से लिखते हैं पंजाब से ये हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बूक। कुमार खेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, शाइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन। और डब वाली से आप लिखते हैं बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। आप सभी साथी सुने अपनी पसंद का ये दुकाना।

दोस्तों आप सुन रहे थे चाचा भतीजा फिल्म का ये दो गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, और आवाज़ें लता और मोहम्मद रफ़ी की थी। और अब आपके कुछ खत हम तक पहुँचे हैं। आप हैं मंडी डबवाली से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया। ये खत मिला है खेरे का सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी सागर, सरगुन, हनी लोट। मंडी गोलवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। और आप हैं मक्खू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, मुनीश बजाज और इनके बहुत से साथी। आप लिखते हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ, शायना शर्मा और आपके साथ हैं निवान शर्मा। खत मिला है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, आर एस पुरी। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। फ्रांसी से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। अबोहर पंजाब से

ओम प्रकाश सोनी, साहिल सोनी, अमन सोनी, करण सोनी, महेंद्र बिश्नोई, और ये खत मिला है रणजीत सोलंकी, परमजीत सोलंकी, विष्णुदेव सोलंकी, आप सबने लिखा है, जगह का नाम आप सबने आरायण लिखा है, और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से आप लिखते हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरख जेतेग और मीका बिरख की तरफ से ये खत मिला है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप और इनके बहुत से साथी, ये खत हमें मिल चुका है। दौलतपुरा से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित, हेमंत और आप सबके परिवार के लोग हैं, ये खत हमें मिला है। हमारे साथी लिखते हैं, सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्श पाल जोसन, और आपने लिखा है 15 PS श्रीगंगानगर से, यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं 10 SDP लालगढ़ से, रामेश्वर निराणिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज और आपके साथ हैं मेहरचंद, हेमू और पूरा परिवार। बहलोल नगर से हरीश, हैरी, जगतार, जहरी, सुशील, लेलू और राकेश चाहर, ये संदेश मिला है हमें। नलोई से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक, वेदांश जांगड़ा और इनके बहुत से साथी, और खत लिखते हैं हनुमानगढ़ से मोहम्मद रजाक खान, ईशान खान, इरफान खान और आहिल खान, जिशान खान, इनका खत भी हमें मिल चुका है। और आप सभी साथियों को हम कार्यक्रम के आखिर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में सुनवाना चाहते हैं लता की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना, आपके लिए सुनिए।

लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त पूरा हो रहा है, इसलिए हमें तो जाना पड़ेगा। आप अनुमति दे दीजिए नरेश वर्मा को। नमस्कार।

अब से थोड़ी देर बाद 12:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे मशहूर अदाकार सुनील दत्त की फिल्मों के चंद बहुत ही खूबसूरत पुराने गाने। 12:30 पर आपके लिए सुगम संगीत में चंद बेहतरीन गज़लें। 12:50 पर कार्यक्रम सुनिएगा खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा भोजन की पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं। जानकारी देंगे रमेश चावरिया। 1 बजे आप सुनते हैं आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में समाचार। और 1:05 पर आपके लिए कार्यक्रम पेश किया जाएगा महिला जगत। कार्यक्रम में जानकारी के विषय रहेंगे सैर करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ने के कारण कपड़ों से दाग हटाने के तरीके, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और करेले के फायदे, इन विषयों पर बातचीत की जाएगी। साथ में फिल्मी गाने होंगे। प्रोग्राम पेश करेंगी रजनी मोती। 2 बजे आप सुनते हैं मिडडे न्यूज़ और 2:15 पर दोपहर समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनते हैं। और 2:30 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत में मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने हम आपको सुनवाएंगे। 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम होंगे।

शाम 5 बजे कार्यक्रम सुनिएगा युववाणी। जानकारी के विषय रहेंगे देश की ऊर्जा और युवा प्रतिभा, वायु प्रदूषण और साथ में साहित्य समाज का दर्पण विषय पर जानकारी दी जाएगी, आज का इतिहास और साथ में चंद फिल्मी गाने आपके लिए। 6 बजे कार्यक्रम विवरण और 6:05 पर आप सुनेंगे सराई की। 6:30 पर आप सुनिएगा हिंदी में समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी। 6:45 पर राजस्थानी में समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे।

जानकारी और गाने आप सुनेंगे। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 न्यूज़ 8:09 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

रात 9:15 पर सुगम संगीत में चंद गज़लें आप सुनेंगे, 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, और 10 बजे आप सुनेंगे खेल जगत हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से हम रिले करेंगे। 10:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, 11 बजे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश आकाशवाणी दिल्ली से, और 11:10 पर हमारी सभा समाप्ति होगी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:05 हो चुके हैं। अब सुने सैनिकों के लिए।

शाम 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। चौपाल में जानकारी के विषय होंगे आपके लिए, चूहा नियंत्रण कैसे करें, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन और अंतराशस्य खेती, बाजार भाव और मौसम की जानकारी उपलब्ध होने पर दी जाएगी और लोकगीत और लोक भजन आपके लिए हमेशा की तरह। 7:45 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत और 8 बजे फिल्म संगीत के अंतर्गत ही एक ही फिल्म के गाने

हमारे तमाम फौजी भाइयों और हमारे तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में मशहूर अदाकार सुनील दत्त की फिल्मों के गाने आपके लिए, सुनिए।

श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम के आगाज़ में आपने सुना सुनील दत्त और माला सिन्हा की फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। और इन्हीं आवाज़ों में एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, सुनिए।

श्रोताओं, आपने गाना सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। फिल्म थी वक्त और साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना हमने आपको सुनवाया। सुनील दत्त की बरसी पर उन्हीं की फिल्मों के गाने आपके लिए हम सुनवा रहे हैं। और अब मीना कुमारी और सुनील दत्त की फिल्म गज़ल का ये खूबसूरत गाना सुनिए। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, सुनें।

श्रोताओं, आपने सुनील दत्त की फिल्म गज़ल का ये गाना सुना, और अब हम आपको सुनवाना चाहते हैं भाई बहन फिल्म का ये गाना। ये फिल्म है सुनील दत्त और नूतन, दोनों फनकारों की अभिनीत फिल्म का गाना आपको हम सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। सुनिए।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर अदाकार सुनील दत्त की बरसी पर उन्हीं की फिल्मों के खूबसूरत गाने, और ये है आखिरी पेशकश आपके लिए। दर्पण फिल्म का ये गाना आप सुने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और ये फिल्म अभिनीत वहीदा रहमान और सुनील दत्त द्वारा। सुनिए ये आखिरी गाना।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दर्पण फिल्म का ये गाना, और सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब सुने सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हो चुके हैं। अब सुने खेत खलिहान में भोजन की पौष्टिकता विषय पर जानकारी।
1: श्रोताओं राम राम। भैलूगो आज बात करांगा आपां भोजन की पौष्टिकता के बारे में, क्योंकि अब आप थे भी जानो के भारत में लगभग 70% जनता गांवों में निवास करे, जका में कुछ मिनक आज भी अशिक्षित यानी अनपढ़ है। और ई अनपढ़ता के कारण संतुलित और पौष्टिक भोजन का ज्ञान का अभाव में बहुत सी बीमारियां से पीड़ित रहे। कई बार ज्यादा खर्चा के डर से भी अच्छो भोजन या खानो पीनो कोनी कर सके नहीं। भाई लोगों बहुत से ऐसा माध्यम है जिसको कम खर्चा के माँ अपने आस पास है या घर के माँ उपलब्ध खाने पीने की चीज़ें से अपना स्वादिष्ट और पौष्टिक जो भोजन है वो बना के और शरीर की पोषण संबंधी जितनी जरूरतें हैं बना पा पूरी कर सका। भाई लोगों अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद को एक सिद्धांत है कि कम खाओ लेकिन जो को भी खाओ अच्छो और हितकर खाओ। इंगो मोटो स्वर थन बता देवा कि जितनी भूख है बीसु थोड़ो कम खाओ और आप आज कह है अपना बुढ़ा बडेरा भी केवता और हमेशा साफ सुथरो और ताजो भोजन ही अपन करनो चीजे। भाई लोगो आपने घर के माँ ही आसानी से उपलब्ध साधना को उचित उपयोग करके अपा स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से प्रोटीन ऊर्जा ले सका और कुपोषण से बच सका। श्रोताओ कई इसी आसान सी विधियां हैं जिसो आपने खाने को पोषक गुणवत्ता बढ़ा सका। बात करा अंकुरित अनाज की तो अंकुरण एक इसी प्रक्रिया है जगह गां की भी त्रियांगो खाद्यान्न जिया अनाज है दलहन है बंगा साबुत दाना नापा उचित हवा और तापक्रम और नमी के माध्यम से अंकुरित कर लेवा यानी अनाज ने उगा लेवा। जब अनाज उगनो शुरू हो जाए और जड़ा निकलनी शुरू हो जाए तो बाद में आपा बिने खाने के काम में ले सका। भाई लोगों अंकुरित अनाज यानी जब बीज उगनो शुरू हो जाए तो बिंग मा जैव रासायनिक क्रियाओं दाना में पौष्टिकता की बढ़ोतरी हो जाए। अंकुरित कणक में प्रोटीन की मात्रा लगभग 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाए। और आज आ बात भी थाने बता देवा के लगभग सगड़ा खाद्यान्न में विटामिन सी 25 से 30% तक बढ़ोतरी हो जाए। और भाई लोगों अंकुरित अनाज में लोहा फॉस्फोरस विटामिन बी भी सांगोपांग बढ़ जाए। और इंग अलावा छिलकाड़ो जो को अनाज है बिंग मा फाइबर दपाऊ को हुए जका मिनखा में कब्जी की शिकायत रेवे तो बे छिलका समेत अनाज न खानो चाहिए। जबाने अपना बुढ़ा बडेरा पुराने टेम में दड़ियो खिचड़ी लापसी घूगरी और जकी कणक ने उबाल के तीज त्योहारा में पखाता तो वो एक अच्छो और पौष्टिकता शुम भरेड़ो खाद्यान्न हों तो जको छिलका समेत अपा खा लेता। अपा घर में रोटी बनावा और घर की माता भिणा आटो छान गे जकी चोकर बारे फेंक देवा तो इशो नहीं करनो है। भाई लोगों छिलकाली दाल यानी साबुत दाल जगह में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होवे इन वास्ते आपने हमेशा छिलकाली साबुत दाल को ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। पहली आप बात करी का चोकर युक्त चुको आटो है बीच बड़ेड़ी जी की रोटी है या फिर भोजन है वो ही अपन खानो चाहिए। पहली तो पुराने टाइम में घर की चक्की से ही हाथ से अनाज पीस के भोजन तैयार कर लेता और इनका कई फायदा भी है। जहाँ चक्की चलाने से कसरत भी हो जाती और स्वास्थ्यवर्धक आटो भी हाथों हाथ तैयार हो जाऊं तो और कणक का जगह पोषक तत्व है वे भी सुरक्षित रहता। लेकिन ये भाग दौड़ भरी जिंदगी गवा मिनख जो को है वो पुराणों खानो पीणो लगभग छोड़ ही दियो। भाई लोगों ईशा बहुत सा पोषक तत्व मोटा अनाज में और चोकर में हुए जका अपने स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हुए। बाजरा को खिचड़ो दलियो राबड़ी ये सब सुपाच्य भोजन हुए चालनी से छान गे जको आटे की आप रोटी बनावा बी सू ज्यादा अच्छो बिना छाने आटे से बनाई जी की रोटी है बा हुए। क्योंकि कण की चोकर में बहुत सा खनिज तत्व विटामिन खनिज लवण हुए जका आप आटो छान के बिन फेंक देवा ये नहीं करना ऐसा। जद भी आप अनाज पिसावा तो हमेशा मोटो आटो रखा क्योंकि अपनी जकी घर की माता बिना भी कई बार कह दिया आटो जो है वो बारीक पिसा के लो महीन पिसा के लो तो आटक मा जका पोषक तत्व है वे ज्यादा बारीक पीस न सो किया नष्ट हो जाए। तो इन वास्ते अपन जद भी आटो पिसा के लिया तो अपन आटो जो है वो थोड़ा सा मोटो रखना चाहिए ताकि भी छिलका जका है वे भी थोड़ा सा बचा रहे और अपने खाने के साथ आप खा ले पाने तो बीच क्या का अपने जकी फाइबर की जकी मात्रा है वह अपने शरीर का में पूर्ति होती रहे। भाई लोग बात करें आप राम रोट की पुराने टाइम में आ भी बात थे सुनेड़ी हो सी लेकिन आजकल तो कई मिनट इन चीज ने जाने भी कोनी। वो भी एक सुपाच्य और पौष्टिक खानो है जका भाई मिनक रोटी खानो पसंद ना करे बे राम रोट बना

ये भी खास कह, ज्यादा खिचड़ी भी कौन करने पड़े और ज्यादा टाइम भी कौन लागे नहीं। भाई लोगों राम रोट सब्जियां ना आटा में गूंद के बनाई जाए, जहाँ पालक है, मेथी है, बथु है, चुलाई है, अने सगला ना बारीक काट के और थोड़ो पीस लेवा और बाद में आटा मां गूंद लेवा। इंग मां तोरी, गाजर, मूली, पेठो, लौकी, जिक्की भी आपने घर में मौजूद हुए बन कद्दूकस करके मिलासका। और श्रोताओं राम रोट ने और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने खातर अपा इंग मां जहाँ अजवाण है, मेथी है, नमक है, वो भी मिलासका। और जब राम रोट तैयार हो जाए तो बाद में बिना अपन दही सगे या फिर अपा लुखी भी खास का, बड़ी स्वादिष्ट हुए, बड़ी अच्छी लगे और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी फायदेमंद हुए। तो जरूर राम रोट बना के खाया करो ताकि आपने जो स्वास्थ्य है वो तंदुरुस्त बने रहे, अपने शरीर में की जान है जी की बापरी रहे। और इनके अलावा जी हम बात करें अपा दूध आटे की रोटी, और वो भी एक बढ़िया खानो है जका टबरिया अपने घर आंगे माँ दूध ना पिया नहीं बन, आपा दूध आटे की रोटी बना के भी खुआस का, ताकि दूध से बच्चों जो है वो प्रोटीन भी ले सके और टाबरिया के वास्ते वो खाणो जो है बड़ो फायदेमंद हुआ। तो जरूर जका टाबर दूध ना पिया बना दूध आटे की रोटी बना के और जरूर खुआ। और बिना टाबरा के सगे सगे कोई भी खाना ना खास के, क्योंकि वो एक संतुलित आहार है, सबके लिए फायदेमंद हुआ। और मिस्सी रोटी भी बड़ी गुणकारी हुए, इन्हें बनाने खातर अपना कणगा आटा का माँ एक धोबो या फिर जरूरत के हिसाब से मोट मूंग या चना का जो आटा वो मिला लेवा और बाद में इन्हें गूंद के और बढ़िया तरीके से अपा इंग जी की रोटी है वह बना के खास का। और इनके अलावा अपा जब भी घर का माँ आटो पिसवा के लियावा या फिर घरे पीसा तो भी मक्के का थोड़ा सो सोयाबीन की जी की दाल है बा भी मिलास का, क्योंकि वो जो को आटो है मिसो आटो है और मिसो जो को आटो है वो बड़ो फायदेमंद हुए। 1 किलो कणक के माँ अपने 2 किलो सोयाबीन मिला लेवा तो ज्यादा बढ़िया रेवे, क्योंकि सोयाबीन के माँ 43 सैकड़ा तक प्रोटीन हुए। तो अपने मिसी रोटी भी खानी चाहिए और पुराने टाइम के माँ लोग खाया करता और स्वस्थ भी रहता, जका भाई लोग मिसी रोटी खानी चाहो तो भी मूंग मोट है या फिर चना का जो आटा वो मिला के और बढ़िया तरीका से बिन गूंद के और मिसी रोटी तैयार कर सके तो बाबड़ी एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हुए। रोटी के बाद बात आवे सब्जी की, क्योंकि सब्जी बिना तो रोटी थे भी जानो का स्वादिष्ट कौन लागे नहीं। तो भाई लोगों आपने घर माँ आप कई बार देखा कि घर की जी की लुगाया पताया है सब्जी ने पहला तो छोले सी और ब्यू बाद का में बिन बारीक काट के और फिर बाद में धोना जो को काम है वो कर सी, तो वो जो को तरीको है वो सब्जी को या मांस का ठीक कोनी नहीं, क्योंकि ई तरह से सब्जी गज का जरूरी पोषक तत्व है भी खत्म हो जाए और जब अपना स्वास्थ्य खराब हो तो डॉक्टर जी कन जाके अपना इलाज कराओ और फिर वे जो का पोषक तत्व आप दवाई के रूप में लेना पड़े तो अपना पीसा टक्का भी लागे, टाइम भी खर्च हो और सागे अपने तकलीफ भी भोगनी पड़े। तो आपने सब्जी बनाना को जो तरीको है वो आज ही आपने थोड़ा सा सुधारना पड़ सी फिर ही काम चाल सी। भाई लोगों पहली आपने बिना काटे बिना छिले जो की सब्जी है बिना धोनी चाहिए और बाद में बिना काटनी चाहिए। हो सके तो कुछ किसी सब्जी है जकान आप बिना काटे बिना छोले ही बना सका, क्योंकि जो कुछ छिलको है वो थाना थोड़ी देर पहले बताया हो कि बिंग में फाइबर की जी मात्रा है वह अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद हुए। तो आप जब भी सब्जी बनाओ तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जकान आपने छीलने की जरूरत कौन पड़े नहीं और आप बिना छिले भी बन बना सका। और जितनी सब्जी आप बारीक काटांगा बीते ही ज्यादा पोषक तत्व जका है भी नष्ट हो जाएगा। तो ये वास्ते सब्जी अपन मोटी मोटी काटनी चाहिए और बाद में सब्जी ने कुछ एक देर भाप में पकानी चाहिए और थोड़ी देर बाद जब भाप में पक जाए तो भी बाद में अपन जब भी घी को तेल को तड़को लगावा तो सब्जी च की हवा बहुत बढ़िया बने। जब आप पहली तड़को लगा देवे तो बीच क्या घी तेल जो है वो सब्जी के माँ रम जाए जबकि बाद में कई बार औखी पचे या फिर कई बार पचे कोने नहीं बद हजमी हो जाए या फिर भी जो स्वाद है वो भी खराब हो जाए। तो आप तड़को लगाने से पहले ये बात को पूरा ध्यान रखना है कि सब्जी ने थोड़ी सी को उबालनी है और बीहू बाद का मापा बिना तड़कनो है मसाला सा गए मिर्च का सा गए और जरूरत के हिसाब से अपने बिगमा पानी भी नाखनो है। और इनके अलावा थाने बतावा भाई लोगों के सब्जी ज्यादा देर तक भी अपने नहीं सिजानी चाहिए यानी नहीं पकानी चाहिए, क्योंकि इंग मा जका मौजूद विटामिन सी है भी खत्म हो जाए। अपना कई भाई लोग है जहाँ साग बनावे जहाँ पालक है मेथी है बथुओ चुलाई सरसों जो साग है वो भी बड़ो फायदेमंद है। बिया बथुआ एक खरपतवार हुआ है लेकिन इगमा यानी बथुआ का पोषक तत्व तो बड़ा कामगा हुआ है। बथुआ का साग है आप पालक है हरी मेथी है चुलाई है सरसों का साग है जो को मिला के रंधा तो इंगो जो को खाणो है इंगो जो को स्वाद है बड़ो लाजवाब हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी बड़ो फायदेमंद हुआ है। तो टेम टेम पर आपने साग जरूर बना के खाने चाहिए और आजकल तो बड़ा होटलों में बड़ो महंगो साग जो है वो मिले और आप बैठे जाके खावा तो अपना घर माँ अपने खेत क्यारी का माँ साग जो है वो अपना दपाऊ को मिल जाए तो आप बिन घरे ले आगे बढ़िया साफ सुथरों धोगे बिना छितरिया और बनावा तो आप खानो भी हो जाए और आप जो स्वास्थ्य है बिन भी कई तरह जगह पोषक तत्व है विटामिन है लवण जगह है भी मिल जाए। और चलता चलता थान बता दूं भाई लोगों के मिश्रित जो को अनाज है मिश्रित जो को भोजन है वो भी आपने कदी कदी करना चाहिए। मिश्रित तो भोजन की बात करें तो जी आप जहाँ कई चीजा ने मिला के आप भोजन तैयार करनो जहाँ दाल है चावल की खिचड़ी है या फिर दलियो है इन्हें आप दूध का सागे भी खास का नमकीन जो को है

0: वो भी बना के खास का। इनके अलावा जी गाजर को हलवो है, सूजी को जो को हलवो है, बिना भी आप बना के खावा तो बहुत बड़ो स्वादिष्ट है। इनमें भी कई तरह की जगह पोषक तत्व है, बड़ा बढ़िया हुआ है, फायदेमंद है। तो आप जब भी खाणो पीणो करा तो आ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा ताकि आपनों जो को स्वास्थ्य है वो बढ़िया बनो रहे। अपना शरीर का माँ कहीं भी तरह अगर पोषक तत्वों की कमी है तब आप पूर्ति होती रहे। पर आ बातों को पूरा ध्यान रखियो सा, पर हूँ चलूँ, राम राम सा, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था भोजन की पौष्टिकता कैसे बनाएं। ये आकाशवाणी का सूरतगढ़ केंद्र है। 1 बजने वाला है। अब जयपुर से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।
1: मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।
0: अभियान के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं की ओर से कलश यात्रा भी निकाली गई। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध पर आयोजित समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने किया। उन्होंने धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। उधर सैलुंबर में सरणी नदी का पूजन कर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जैसलमेर में सरपाल से प्रभात फेरी और कलश यात्रा की शुरुआत हुई और प्रेरक नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा दशमी से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों, नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। प्रदेश से इस बार 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनमें अलगोजा वादक तगाराम भील, भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती और समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज शामिल है। हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के 1,60,000 से अधिक लोग सऊदी अरब के मक्का शहर से 5 दिन के इस सफर की शुरुआत करेंगे और मीना में इकट्ठा होंगे। इसके बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस साल हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। वहीं राजस्थान से इस बार करीब 4,500 लोग हज के मुकद्दस सफर पर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में 4थी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। कार्यक्रम सुने महिला जगत। कार्यक्रम पेश कर रही हैं रजनी मोदी।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी बहनों को, हमारे प्यारे श्रोताओं को रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कड़कड़ाती इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी के मौसम में आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, होना भी चाहिए। हम समय समय पर आपके हाल के बारे में पूछते रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये फैक्ट भी है, साइंटिफिक ही मान लो, जब दो लोग आपस में दिलों की बात करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं ना बहनों, तो साइंस भी ये कहती है कि बहुत दर्द हल्का हो जाता है। चलिए आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। विषय बहुत सारे हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ संगीत की दुनिया में भी चलेंगे। शुरुआत करते हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं ना, सैर से शुरुआत करते हैं। छुट्टियों का दौर आता है और हमारे पास पर्याप्त समय होता है किसी जगह की सैर करने का, प्रकृति के सुंदर रूप को करीब से देखने का। तो जरा बताइए, इस बार छुट्टियां पड़ रही हैं या फिर बिजनेस से फुर्सत मिली, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? बहनों, भारत के कई हिस्सों में प्रकृति ने अनुपम उपहार दिए, जिसे देखने से मन रोमांचित हो उठता है। चलिए आज थोड़ी देर के लिए कल्पना की दुनिया में चलते हैं और निकलते हैं सैर पर। क्या आप तैयार हैं? हाँ तो ठीक है, बैग आपने पैक कर लिया। आज हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए। पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल की बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में ये स्थापित किया गया। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। बाद में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया बहनों, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिम कॉर्बेट पहले एक शिकारी हुआ करते थे, लेकिन समय के बाद उनकी चेतना जागी और उन्होंने इस तरह से ये बंद करके, शिकार करना बंद करके, उनके संरक्षण में अपने आप को समर्पित कर दिया। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा की पातलीदून घाटी के बीच में है, जो कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो फिर चलिए निकलते हैं सैर के लिए। बहनों अब कल्पना कीजिए कि आप गाड़ी पे सवार होकर जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अरे वाह, क्या नज़ारे हैं! मौसम ने भी क्या साथ दिया है, हल्की हल्की बूंदों के साथ सुहाना सा मौसम। आइए आनंद लेते हैं।

मैनू कैसा लग रहा है सैर करते हुए? आनंद आ रहा है ना इस मौसम का? अच्छा लग रहा है। चलिए आज हम गाइड का काम करते हैं और आप हैं हमारे मेहमान। तो दर्शकों, ये बांध अभयारण्य आज लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैनू यात्रा लंबी है और समय कम, तो आपको आज हम मुख्य मुख्य जगह के दर्शन करवाते हैं। ये सामने जो आप देख रही हैं ना, शिवालिक हिमालय है, वह उस तरफ तराई क्षेत्र है। इसको सामने से देखने पर खूबसूरत नज़ारे हैं, नदियाँ, झीलें, ऊंचे पहाड़ और विशाल घास के मैदान मन को लुभा रहे हैं। अनुभव कीजिए कि ये असली जंगल है। आपको बता दें कि इस पार्क का आकर्षण जो है ना, वो है बंगाल टाइगर और एशियाई हाथी। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की 650 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाती हैं। मैंने इन दिनों तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया यहाँ का, सो पक्षी तो शायद ना दिखें, क्योंकि पक्षियों के लिए अक्टूबर से मार्च में आपको आना पड़ेगा। इस वक्त बाघ और हाथियों के दर्शन हो जाएंगे। अगर भूख लग गई है तो डरने की जरूरत नहीं है, भोजन के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे कैंटीन और रसोई घर उपलब्ध हैं। मतलब इतना सा है कि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जीवन भर का यादगार अनुभव भी मिलता है। बहनों, ये जिंदगी का सफर भी बड़ा सुहाना है। थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन हंसकर गुजर जाना है। हाँ, हम जंगल में सफर कर रहे हैं, जंगल में सैर कर रहे हैं, हमारा भी एक फर्ज बनता है जिम कॉर्बेट की तरह, कि प्राणियों को मारा नहीं जाए, किसी तरह का उनको

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बहनों, हम अभी तक तो घूम रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क में, अब वापस घर आने का समय हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं माँ की। बहनों, माँ बनना इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं माँ बनने के दौरान। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड शुगर का स्तर इतना बढ़ जाता है कि इसे गर्भकालीन मधुमेह भी कहते हैं। वैसे तो स्वस्थ और संतुलित आहार खाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी इसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन भी लेना पड़ता है। समय रहते अगर इसका इलाज हो जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ठीक रहता है। गर्भकालीन मधुमेह केवल गर्भावस्था में ही विकसित होता है। ऐसा तब होता है बहनों जब गर्भनाल से निकलने वाले हार्मोन्स इंसुलिन के उपयोग या निर्माण की आपकी क्षमता को अवरुद्ध कर देते हैं। इंसुलिन आपके शरीर को रक्त में ग्लूकोज की सही मात्रा बनाए रखने में मदद करता है। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता गर्भावस्था में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षित मातृत्व का सुख पाना है तो थोड़ी सी सावधानी तो बहनों रखनी पड़ेगी।

बहनों, गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह परिवर्तनों और शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने के तरीके कारण होता है, या प्लेसेंटा द्वारा इंसुलिन के असर को कम करने से होता है। इसके प्रमुख कारणों में मोटापा, आनुवंशिक इतिहास और पीसीओडी शामिल है। इसके लक्षणों में प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ये सब रहता है। इसलिए 24 से 28 सप्ताह जब प्रेगनेंसी के हैं तो उसमें टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैंने हर समय घबराने की आवश्यकता नहीं रहती, समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए समय पर उचित आहार शुरू कर देना चाहिए। साबुत अनाज, फाइबर से भरपूर सब्जियां और फल खाएं। एक बार में ज़्यादा खाने के बजाय दिन में 5-6 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ताकि ब्लड शुगर ना बढ़े। डेली आधा घंटा हल्की सैर करें, बहुत तेज़ी से चलने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी को एक्टिव रखें, मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे पेय पदार्थों से बचना चाहिए। 24 से 28 सप्ताह के बीच शुगर टेस्ट ज़रूर करवाएं। थोड़ी सी सावधानी आपके जीवन को खुशहाल बना देती है, और जब नन्ही किलकारी की गूंज सुनाई देती है ना, तो वैसे ही सारे दुख दर्द माँ तो भूल ही जाती है, क्योंकि रिश्ता दिल का जो रह रहा।

बहनों, घर का काम करते समय या बाहर खाते पीते हुए अक्सर कपड़ों पर दाग लग ही जाते हैं। हल्दी, तेल, जंग, ये सब दाग तो इतने जिद्दी होते हैं कि कपड़ों को धोने के बाद भी दाग रह जाता है। कई बार हम बहनें जो है डिटर्जेंट या केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, फिर भी दाग पूरी तरह छूटता नहीं है। हमारे आसपास ही ऐसी सामग्री होती है जिसे यूज़ करके हम जिद्दी से जिद्दी दाग भी छुड़वा सकते हैं। बहनों, कपड़े पर लगे जिद्दी दाग तो हम जैसे तैसे हटा ही लेंगे, लेकिन पहले इनकी सुन लेते हैं।

बहनों, जिंदगी बड़ी छोटी है। इससे पहले कि समय बीते, जो कहना है एक दूसरे को कह डालो। बात पछतावे के कुछ नहीं बचता। जितना प्यार हो सके बांट लो, जिंदगी को खुल कर जी लो। ये छोटी मोटी परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। अब शौक शौक में कुछ खाने बैठे और कपड़ों पर दाग लग जाए तो चिंता ना करें, समय का आनंद लें। क्योंकि आनंद का समय बार बार नहीं आता, दाग का क्या है, देर सवेर छूट ही जाएगा। लेकिन बहनों, कपड़ों के दाग तो छूट जाते हैं। जो जीवन में कभी दाग लग जाए ना, उसको मिटाना मुश्किल है, इससे बचना चाहिए। क्योंकि वो दाग किसी भी डिटर्जेंट से दूर नहीं होते। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कपड़ों के दाग हटाने के लिए, फिर आगे की बात पे चलेंगे। हल्दी का दाग कपड़ा जल्दी पकड़ लेता है और पीला निशान छोड़ जाता है। दाग वाली जगह पर नींबू का रस अच्छी तरह से लगा दें, कपड़ों को हल्का सा रगड़ें और धूप में सूखने को रख दें। धूप प्राकृतिक ब्लीच का काम करती है, बाद में सामान्य डिटर्जेंट से धो लें। अब तेल का दाग भी कई बार लग जाता है, इसे छुड़ाने के लिए दाग वाली जगह पर टेलकम पाउडर छिड़क दें और 1-2 घंटे के लिए रहने दें, ताकि पाउडर तेल के दाग को सोख ले अच्छे से। फिर उस जगह पर थोड़ा डिश वॉश लिक्विड लगाकर हल्का रगड़ें और धो लें, निशान हट जाएगा। जंग का दाग लोहे जैसा सख्त और गहरा होता है, इसे हटाने के लिए दाग पर नमक छिड़कें, ऊपर से सफ़ेद सिरका डाल दें, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर धूप में रख दें, बाद में साफ पानी से धो लें। धीरे धीरे दाग चला जाएगा। बहनों, कपड़ों के दाग तो निकल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे दाग का क्या उपाय है? जरा आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं।

एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बहनों, दौर ही कुछ ऐसा चल पड़ा है, लेकिन ईमानदारी की भी कोई कीमत होती है। थोड़ी सी सच्चाई जीवन में होनी चाहिए, इससे कि जीवन की खूबसूरती बनी रहती है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं रसोई में। जानते हैं करेले के फायदे। करेला, जिसे अंग्रेजी में बीटर गार्ड या बीटर मेलन कहा जाता है, ये भारत में बहुत आम सी सब्जी है। बहनों, इसका स्वाद भले ही कड़वा होता है, लेकिन

करेला के फायदे इतने ज़्यादा हैं कि इसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया। इसमें कई ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। करेला कम कैलोरी वाली लेकिन पोषण से भरपूर सब्जी है। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है। आयरन शरीर में खून की कमी दूर करता है। फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। मैंने करेला डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। करेला वजन घटाने में भी सहायक है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है। मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है करेला। पाचन तंत्र को बेहतर करता है। पेट के लिए भी अच्छा है। गैस और ब्लॉटिंग कम करके कब्ज में राहत देता है। बहनों करेला लीवर के लिए भी फायदेमंद है। लीवर डिटॉक्स में मदद करता है। फैटी लीवर के जोखिम को कम करता है। त्वचा संबंधी प्रॉब्लम भी दूर करता है करेला।

इनके अनुभव जितना हो सके आप लें। हो सकता है कि वो उम्र के अनुसार थोड़ा उनके बात करने का लहजा भले ही बदल जाता होगा, लेकिन जो वो एक्सपीरियंस बताते हैं वो निश्चित तौर पे हमारे व्यापार को, हमारे कारोबार को और हमारी जो घर गृहस्थी है, हमारा परिवार है, उसको एक सुखद क्षण देता है। तो बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनका सम्मान करें।

बहनों, घर की जो नींव होती है ना, वो बुजुर्गों पे टिकी होती है। बुजुर्ग हमारे घर के वट वृक्ष होते हैं। जितना हो सके इस अनमोल निधि को आप बचा के रखें, रिस्पेक्ट करें अपने बुजुर्गों का, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो कहीं ना कहीं इन बुजुर्गों की ही देन है, इनके एक्सपीरियंस।

जब भी समय लगे एक पल के लिए उनको पास बिठाएं और बस इतना कह दें,

बहनों, आपसे बातें करते हुए समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन सामने लगी घड़ी की जो सुइयां हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इजाज़त नहीं दे रही कि आज के कार्यक्रम को और आगे बढ़ा जाए। इसलिए रजनी को दे आ गया नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। कार्यक्रम पेश किया रजनी मोदी ने। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2 बजने वाले हैं, अब दिल्ली से समाचार होंगे।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news.

0: असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताज़ा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप

0: चौंकाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू

0: प्रकोप की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4थे स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कार्टन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत।

संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह, जिन्होंने 1980 के दशक में जगदीश खन्ना के साथ मिलकर उत्तम जगदीश के नाम से संगीतकार जोड़ी बनाई और 80 और 90 के दशक में बहुत ही खूबसूरत संगीत दिया, और बाद की पारी में उन्होंने उत्तम सिंह के नाम से संगीत दिया। तो उत्तम सिंह का आज जन्मदिन है, सुनिए उन्हीं की फिल्मों के बहुत ही खूबसूरत गाने।

दोस्तों, कार्यक्रम के आगाज में आप सुन रहे थे पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये युगल गीत। गाना लिखा सरदार अंजुम ने और संगीत आनंद मिलिंद का था, और ये फिल्म थी, माफ़ करें, संगीत उत्तम जगदीश का था और ये फिल्म थी गवाही। और हम बात कर रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह की, और इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ गाना हम आपको अब सुनवाते हैं वारिस फिल्म से।

दोस्तों, आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये दो गाना। मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ थी और ये गाना वर्मा मलिक ने लिखा, संगीत उत्तम जगदीश का था। हम बात कर रहे हैं मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह के बारे में। उत्तम सिंह का जन्म आज ही के दिन 25 मई 1948 को हुआ पंजाब में, और शुरू में ये वायलिन वादक रहे, बाद में ये कई मशहूर संगीतकारों के साथ म्यूजिक अरेंजर रहे, सहायक रहे, और 80 के दशक में इन्होंने जगदीश खन्ना के साथ मिलकर उत्तम जगदीश नाम की जोड़ी बनाकर स्वतंत्र संगीत देना शुरू किया। इन्हीं की फिल्म का एक और खूबसूरत गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, आइए सुने।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कलर की फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये गीत लिखा मनोज कुमार ने और संगीत उत्तम जगदीश का। उत्तम जगदीश के संगीतबद्ध किए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश।

आप सुन रहे थे गवाही फिल्म का गाना। सरदार अंजुम के बोल थे और संगीत उत्तम जगदीश का था। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं उत्तम जगदीश के संगीतबद्ध किए गाने, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

पेंटर बाबू फिल्म का ये दो गाना सुनिए, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। संगीत है उत्तम जगदीश का, आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार उत्तम जगदीश के संगीतबद्ध किए गाने, मशहूर संगीतकार उत्तम सिंह के जन्मदिन पर। अब नरेश वर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 3 बज चुके हैं, अब दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम होंगे।
1: की खिदमत में आदाब। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हम हाजिर हैं दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। तीन बजकर 5 मिनट पर खबरें नश्र होंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे मेरी पसंद। 3:30 पर आप सुनेंगे फीचर, उन्वान है मसीहा दर्द।

1071 हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। तीन बजकर पांच मिनट पर खबरें नश्र होंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे मेरी पसंद। 3:30 पर आप सुनेंगे फीचर, उनवान है मसीहा दर्द का, तहरीर है जनाब अनीस अमरोफी की। 4 आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। 4:50 पर आप सुनेंगे खबरें।

आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 2 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद की जाएगी। इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि ये लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अलाक्वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बहरुल काहिल खत्ते में अमन व सलामती और इस्तेहकाम पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक क्लीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदरनशी होने के नाते इस मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनेकाद में बार बार होने वाली कोताही पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ये बात मायूसकुन है कि इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाज़े से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जांच ब्यूरो CBI से जवाब तलब किए हैं। इन दरख्वास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज्यादा मजबूत और खुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वो जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे, जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असरनो तरतीब देने के लिए पिछले साल की थी। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक शोपियां के इमाम साहिब इलाके में दारुल उलूम सिराजुल उलूम में छापे मारने की कार्रवाई की गई। मस्कूरा इदारे को पिछले महीने गैर कानूनी इदारा करार दिया गया था। जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहायशगाह और श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में लड़कियों के एक मजहबी स्कूल जमितुल बनात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि फितरत के लामहदूल वसाइल सूर्य देवता की शक्ति और बारिश के आशीर्वाद से हर एक की जिंदगी में मुसर्रत और खुशहाली आएगी। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए वजीर आजम ने यह उम्मीद जाहिर की कि कुर्रा अर्ज हमेशा सरसब्ज व शादाब और खुशहाल रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। एशिया में इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासिक हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आजमीन हज मिना में जमा हो रहे हैं। आजमीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मिना जाने के लिए अपने सफर का आगाज किया। वो रात मिना में गुजारेंगे और कल तलबिया का विर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आजमीन फरीजा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए हुरमुस को खोलने के बारे में ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। नामा निगारों से बात करते हुए ईरान के

0: एटमी प्रोग्राम और इलाकाई सलामती के बारे में वसीतर मुजाकरात की राह हमवार हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने जोर देकर कहा कि यह भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बकौल उनके कोई खराब मुआहदा कबूल नहीं करेंगे और दीगर मुतबादिल रास्तों पर गौर करने से पहले सिफारतकारी को भरपूर मौका दिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में महाजाराई के खात्मे के लिए मौजूदा कोशिशों के तई आलमी हिमायत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कयाम अमन का रास्ता बहुत आसान रास्ता नहीं है। जनाब मार्को रूबियो भारतीय रहनुमाओं के साथ मीटिंगों और क्वाड के वज़रा खारजा में मीटिंग में शिरकत के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। ईरान के रहबले आला मुश्तबा खामनाई के बारे में मालूम हुआ है कि वो इंतहाई महदूद मवासलाती सहूलियात के साथ किसी नामालूम मकाम पर खुफिया अंदाज से रह रहे हैं। अमरीका के सुराग रसा एहलकारों के हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इत्तलात में ये भी कहा गया है कि हालिया हमलों में मुश्तबा खामनाई जख्मी हो गए थे और उसके बाद से वो इंतहाई सिक्योरिटी में रह रहे हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद से वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। भारत ने जापान में मुनक़िदा अल्ट्रा रनर्स की बैन अल-अक़वामी 24 घंटे की एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में तारीख रकम की है। भारत ने इसमें कुल 5 तमगे जीते और मर्दों के जुमरे में उसका दबदबा रहा। अमर सिंह देवांदा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। गिनो एंटनी ने चांदी का तमगा जीता, जबकि कांसे का तमगा भी भारत को ही मिला। ख्वातीन के जुमरे में भारतीय टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो रहा है। इस टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा यह सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर के बजाय शहर ओस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। इस सुपर टूर्नामेंट में सरकर्दा ग्रैंड मास्टर्स मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद हिस्सा लेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। भारत ने जापान में आईएयू एशिया ओशियाना चैंपियनशिप में 5 तमगे जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आप सुनेंगे मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम की पहली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज़ में और फिल्म का नाम है मेरे महबूब।

अभी आप सुन रहे थे मेरे महबूब की मेहंदी फिल्म का नगमा, आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे चाइना टाउन फिल्म का नगमा, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। इसी के साथ मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं, फीचर उनवान है मसीहा दर्द का, तहरीर है जनाब अनीस अमरोहवी की।

नरगिस के इंतकाल के बाद उन्होंने एक बार फिर अपनी इमेज को तोड़ा और विलन और एंग्री मैन के किरदार अदा किए। फिल्म जख्मी इंसान और भाई भाई में उन्होंने एंग्री मैन का किरदार अदा किया और बीआर फिल्म्स की फिल्म 36 घंटे में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया। इसी तरह फिल्म गीता मेरा नाम में भी वो एंग्री मैन और विलन के मिले जुले किरदार में नजर आए। ये सब कोशिश उन्होंने अपनी किरदार निगारी और अदाकारी में तनव्वो पैदा करने के लिए की थी।

0: इंसानियत की खिदमत के कामों से उनकी दिलचस्पी बेमिसाल और लाजवाब थी। अपाहिज और माजूरों की फलाह व बहबूद से मुतालिक फिक्रमंद सुनील दत्त अपनी जात में एक अंजुमन थे। समाज के पिछड़े हुए कमजोर अवाम की खुशहाली के लिए उनकी जद्दोजहद और मेहनत ने पूरी एक नस्ल को मुतासिर किया। कैंसर जैसे मूजी मर्ज की रोकथाम और उसके सस्ते इलाज से मुतालिक जो मिशन उनकी शरीक हयात ने शुरू किया था, दत्त साहब मरते दम तक उस मिशन पर काम करते रहे।
1: सुनील दत्त ने निजी जिंदगी में जहां बहुत से सुख दुख देखे, वहीं अपनी फिल्मी जिंदगी में कई तजुर्बे भी किए। उन्होंने मार्केट की परवाह ना करते हुए फिल्म यादें बनाई। ये एक अजीब तजुर्बाती फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त पूरी फिल्म में अकेले अदाकार थे और बाकी उनके चारों तरफ बिखरी हुई आवाजें थीं जो उनकी यादों से मुतालिक थीं। यादें का प्रीमियर बंबई के मराठा मंदिर में हुआ था। इसके बाद उन्होंने राजस्थान की खुश्क जिंदगी पर एक तजुर्बाती फिल्म रेशमा और शेरा बनाई। इन दोनों फिल्मों की तारीफ दिलीप कुमार ने भी की थी।
0: सुनील दत्त हर किरदार में अपने आप को ढाल लेते थे, चाहे गांव का नौजवान हो या फिल्म गुमराह का मायूस आशिक या मुझे जीने दोगा शेर दिल डाकू जिसकी आंखों से शोले लपकते हैं। फिल्म मिलन का गोपी नाव वाला जो अपनी मालकिन बीबी जी को कॉलेज के फंक्शन के लिए सावन का महीना पवन करे शोर गीत याद कराता है। फिल्म वक्त का वकील जो अपने भाई राजू को फांसी के फंदे से बचा लेता है। फिल्म हमराज का वो मशहूर गीतकार जो अपनी आवाज से फजाओं को मुअत्तर कर देता है। फिल्म पड़ोसन का भोला जो अपनी महबूबा सायरा बानो को हासिल करने के लिए अपने उस्ताद किशोर कुमार की आवाज का सहारा लेता है। इसी तरह सुनील दत्त ने फिल्म साधु और शैतान, मेरा साया, खानदान, सुजाता, मेहरबान, गीता मेरा नाम और गजल वगैरह फिल्मों में अपनी जिंदगी के बेहतरीन किरदार अदा किए।

0: सुनील दत्त ने एक जिम्मेदार बाप का किरदार अदा करते हुए सन 1981 में अपने बेटे संजय दत्त के लिए फिल्म रॉकी बनाई। उन्होंने संजय दत्त से साफ अल्फाज में कह दिया था कि इसके बाद वो संजू बाबा की कोई मदद नहीं करेंगे और उसे खुद अपनी सलाहियतों के सहारे ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाना होगा।
1: नरगिस दत्त की बड़ी तमन्ना थी कि वो फिल्म रॉकी मुकम्मल होने पर अपने बेटे को परदेसी पर देखें, मगर रॉकी मुकम्मल होने से कबल ही नरगिस दत्त की जिंदगी मुकम्मल हो गई और वो ये फिल्म नहीं देख सकी।

0: हालांकि रॉकी और उसके बाद की कई फिल्में संजय दत्त को ज्यादा कामयाबी न दे सकी, मगर बाद में जब उन्होंने नशे की आदत से तौबा कर ली और अपनी सारी तवज्जो अदाकारी पर मरकूज की, तब वो एक कामयाब अदाकार के तौर पर खुद की पहचान कायम कर सके।
1: अदाकारी के अलावा सुनील दत्त ने फिल्म साजी और हिदायतकारी के मैदान में भी अपनी अलग शनाख्त कायम की। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो, यादें, रॉकी, रेशमा और शेरा, डाकू और जवान, दर्द का रिश्ता और ये आग कब बुझेगी जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ समाज की आईनादारी की बल्कि नाजरीन की पसंदीदगी और दाद भी हासिल की।
0: दिलीप कुमार के बाद सुनील दत्त ही फिल्मी दुनिया की दूसरी शख्सियत हैं जिनको बंबई के शरफ के ओहदे के लिए नामजद किया गया। उन्होंने सच्चे दिल और लगन के साथ अपने फराइज अंजाम दिए। उनकी बीवी नरगिस दत्त को राज्यसभा का मेंबर नामजद किया गया और वो भी मुल्क कौम की खिदमत में अपने शौहर के शाना बशाना हिस्सा लेती रही। नरगिस को हुकूमत हिंद की तरफ से सन 1980 में पद्मश्री का एजाज भी मिला और साबिका वजीर आजम श्रीमती इंदिरा गांधी से उनके जाती ताल्लुकात भी थे। श्रीमती दत्त को जब कैंसर के इलाज के लिए अमरीका जाना पड़ा तो सुनील दत्त ने उनकी खिदमत और तीमारदारी में दिन रात एक कर दिए और अपने सारे काम सारे प्रोग्राम कैंसिल करके नरगिस दत्त को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर खुदा की मर्जी के आगे इंसान की कब चली है।
1: नरगिस दत्त 3 मई सन 1981 के दिन सुनील दत्त को अकेला छोड़कर चली गईं और इस तरह सुनील दत्त का सबसे अजीज दोस्त मोहसिन और हमदर्द उनसे जुदा हो गया। सुनील दत्त की सेक्युलर शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी उस वक्त लोगों के सामने आई जब उन्होंने नरगिस दत्त की वसीयत के मुताबिक उनकी इस्लामी रसूम के मुताबिक तदफीन की।

0: सुनील दत्त अज्म और हौसले का ही दूसरा नाम था। जब सन 1981 में कैंसर के मूजी मर्ज से नरगिस का इंतकाल हो गया तो वो जैसे टूट से गए, मगर जल्द ही उन्होंने खुद पर काबू पाया और इसी मौजू पर फिल्म दर्द का रिश्ता बनाई, जो अपने आप में एक बेहतरीन फिल्म थी। सुनील दत्त ने इस फिल्म की तमाम आमदनी कैंसर अस्पताल में बतौर अतिया दे दी। इसके अलावा टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर वार्ड नरगिस दत्त के नाम पर खुलवाया ताकि कैंसर से हत्तल इम्कान जंग जारी रखी जा सके।
1: बाज इत्तफाकात भी बड़े अजीब होते हैं। फिल्म साज और हिदायतकार महबूब खान ने राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त को दो सगे भाइयों के तौर पर फिल्म मदर इंडिया में पेश किया था। ये दोनों फिल्मी दुनिया में कामयाब हुए। दोनों ने अपनी अपनी मर्जी से शादी की। दोनों ने आस पास ही बंगले खरीदे। दोनों के घर पहले एक एक लड़का पैदा हुआ और बाद में दो दो लड़कियां और चौथी कोई औलाद नहीं हुई।
0: दोनों ने अपने अपने बंगलों में अपने अपने थिएटर बनवाए। दोनों प्रोड्यूसर बने। दोनों ने अपने अपने

लड़कों के लिए फिल्म बनाई और दोनों के लड़के हीरो बने। हरेंद्र कुमार के लड़के कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की लड़की नम्रता दत्त से हुई और दोनों एक दूसरे के समधी बने। ये सब हकीकतें हैं मगर हसीन इत्तफाक भी।

0: रस्सी की मदद से उन्होंने डूबते हुए शख्स को बचा लिया। उनका ये अमल उस वक्त इसलिए भी ज्यादा काबिल कदर माना गया क्योंकि उस वक्त उनके कंधों पर एक माँ, एक छोटी बहन और एक छोटे भाई की जिम्मेदारी भी थी, जो उस वक्त हरियाणा के जमुनानगर के एक गांव में रहते थे।
1: इस तरह उन्होंने यकुम अगस्त सन 1950 को बंबई के तमाम अखबारात की शह सुर्खियों में जगह बनाकर लोगों को चौंका दिया। सन 1989 में बंबई का शेरिफ बनने के बाद सुनील दत्त को आम लोगों की जिंदगी को ज्यादा करीब से देखने का मौका मिला। उन्होंने लोगों की तकलीफें देखी, झोपड़ियां देखी, बरसात में लोगों की झोपड़ियों को ढहते देखा, गर्मी में पानी के लिए दूर दूर से सर पर घड़े लिए लोगों को भटकते देखा।
0: उस एक बरस में सुनील दत्त ने जिंदगी का सारा दर्द महसूस कर लिया। तब उन्हें अपनी जिंदगी और उसकी आसाइशें खुद अपनी ही आंखों में चुभने लगी। शायद वही दर्द उनके सीने में आखिरी दम तक करवटें लेता रहा और वो मुस्तकिल समाज की खिदमत करते रहे।
1: इसे कहते हैं वक्त की हेरा फेरी। एक छोटी सी देहात में पैदा होने वाले रेडियो अनाउंसर को वक्त ने पार्लियामेंट में बिठा दिया। इसमें जितना भी हाथ वक्त का है उससे कहीं ज्यादा सुनील दत्त की अपनी मेहनत, लगन और जज्बे हमदर्दी का भी दखल है।
0: 3-4 दिन की मुसलसल बीमारी के बाद 25 मई सन 2005 की सुबह तकरीबन 11:40 पर सुनील दत्त को नींद में दिल का दौरा पड़ा और एक फनकार, एक समाजी खिदमतगार और कई फिल्मों का खालिक अपने खालिक हकीकी से जा मिला। सुनील दत्त की आखिरी रसूम में मुल्क के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और जमहूरिया हिंद के कई सरकर्दा लीडरों और वजीरों ने शिरकत की।
1: फिल्म इंडस्ट्री की तमाम हस्तियां इस फरिश्ता सिफत इंसान को अलविदा कहने के लिए आईं। पूरे मुल्क में एक दिन के शोक का ऐलान किया गया और मुल्क को बैरून मुल्क से बेशुमार ताजियती पैगाम आए। सुनील दत्त क्योंकि काबीना में वजीर थे, लिहाजा उनकी आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। सियासत में उन्हें सेकुलर नजरियात का चैंपियन कहा जाता था और उनकी शबीह हमेशा बेदाग रही। एक बेहतरीन अदाकार के अलावा सुनील दत्त को सच्चे अवामी खिदमतगार, एक बेहतरीन इंसान और दर्दमंद सियासतदान के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे फीचर, उनवान था मसीहा दर्द का, तहरीर थी जनाब अनीस अमरोही की। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम।

अभी आप सुन रहे थे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का नगमा। आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आइए अब सुनते हैं कामचोर फिल्म का नगमा। आवाज है लता मंगेशकर की।

आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आइए अब सुनते हैं कामचोर फिल्म का नगमा, आवाज है लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में कामचोर फिल्म का नगमा। आइए अब सुनते हैं वल्लाह क्या बात है फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

अभी आप सुन रहे थे आबरू फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब सुनते हैं आधी रात के बाद फिल्म का नगमा, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

अभी आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का नगमा, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। आइए सुनते हैं सुमन कल्याणपुरी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आंधी और तूफ़ान का नगमा।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। आइए अब सुनते हैं अदालत फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

और इलाकाई सलामती के बारे में वसी तर मुजाकरात की राह हमवार हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने जोर देकर कहा कि ये भी कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बकौल उनके कोई खराब माहदा कबूल नहीं करेंगे और दीगर मुतबादल रास्तों पर गौर करने से पहले सिफारतकारी को भरपूर मौका दिया जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि मगरबी एशिया में महाजाराई के खात्मे के लिए मौजूदा कोशिशों के तहत आलमी हिमायत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि क्याम अमन का रास्ता बहुत आसान रास्ता नहीं है। जनाब मार्को रोबियो भारतीय रहनुमा के साथ मीटिंगों और क्वाड के वज़रा खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए भारत के दौरे पर आए हुए हैं। क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मैटसू और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ारत खारजा ने कहा कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। मौजूदा इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैन अवी उमूर पर पेशरफ का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान पर मुश्तमिल है और यह भारत बैरिक खत्ते में अमन सलामती इस्तेहकाम पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मजकूरा ग्रुप के मौजूदा सदर नशीन होने के नाते इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में विल्मिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुलकाए खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसअत देने की खातिर अहम इकदाम का ऐलान किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि फितरत के लामहदूद वसाइल, सूर्य देवता की शक्ति और बारिश के आशीर्वाद से हर एक की जिंदगी में मसरत खुशहाली आएगी। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि कुर्राए अर्ज हमेशा सरसब्ज और शादाब और खुशहाल रहेगा। एशिया में इलाकाई कशीदगी के तनाज़ में सऊदी अरब में मनासिक हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनिया भर से लाखों आज़मीन हज मीना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए अपने सफर का आगाज किया। वो रात मीना में गुजारेंगे और कल तलवी का व्रत करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ हज का रुकन आज़म अदा किया जाता है। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आज़मीन फरीदा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। ईरान के रहबर आला मुस्तफा खामनेई ने के बारे में मालूम हुआ कि इंतहाई महदूद मवासलाती सहूलियात के साथ किसी नामालूम मुकाम पर खुफिया अंदाज से रह रहे हैं। अमरीका के सुरक्षा एहलकारों के हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इत्तलात में ये भी कहा गया है कि हालिया हमलों में मुस्तफा खामनेई जख्मी हो गए थे और उसके बाद से वो इंतहाई सिक्योरिटी बंदोबस्त में रह रहे हैं। लड़ाई शुरू होने के बाद से वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। तुर्किया की फसाद से निपटने वाली पुलिस ने कल दस्तबरदार होने वाली क्यादत से असल अपोजिशन पार्टी के हेडक्वार्टर्स को खाली कराने की खातिर आंसू गैस के गोले दागे ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसमें दाखिल हुई। इस वाक़े के बाद तुर्किया में बहरान किसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की इमारत के ऊपर आंसू गैस के गोलों का धुआं देखा गया, जबकि इस इमारत के अंदर थे वो शदीद नारेबाजी कर रहे थे और दाखिले के मकाम पर पुलिस पर चीजें फेंक रहे थे। ताहम इस कार्रवाई के दौरान किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी ने NIA ने आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शोपियां जिले में 3 मकामात पर तलाश की कार्रवाई का अंजाम दी। हुक्काम के मुताबिक शोपियां के इमाम साहब इलाके में दारुल उलूम सिराजुल उलूम में छापे मारने की कार्रवाई की गई। मस्कूरा इदारे को पिछले महीने गैर कानूनी इदारा करार दिया गया था। जमात इस्लामी के साबिक सरबरा शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह और श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में लड़कियों के एक मजहबी स्कूल जमीतुल अलबिनात पर भी तलाश की कार्रवाई अंजाम दी गई। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साहली आंध्र प्रदेश, मशरकी राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। इधर शुमाल मशरकी भारत के बाद हिस्सों, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते, सिक्किम, केरलम

0: चाहे तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार जजायर, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के बाद मकाम पर आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की गई है। भारत ने जापान में मुनदा अल्ट्रा रस की बैन अवी 24 घंटे की एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप में तारीख रकम की। भारत ने इसमें कुल 5 तमगे जीते और मर्दों के जुमरे में उसका दबदबा रहा। अमर सिंह देविंदा ने 24 घंटे में 282.881 किलोमीटर मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। जीनो एंटोनी ने चांदी का तमगा जीता जबकि कांसे का तमगा भी भारत को ही मिला। खवातीन के जुमरे में भारतीय टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। ओस्लो में पिछले राउंड के मुकाबले के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाजाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर के बजाय शहर ओस्लो में हो रहा है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तहानात के इनकास से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA और CBI से तलब किए जवाब और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि आबना हुरमुस के मामले पर ईरान के साथ अमरीका की बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके मनपसंद फिल्मी नगमे और साथ में कुछ टॉपिक्स भी हैं, देश की ऊर्जा, युवा प्रतिभा, वायु प्रदूषण, साहित्य, समाज का दर्पण, माता पिता का सम्मान, मिशन लाइफ और आज का इतिहास। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस शक्ति की जो किसी भी राष्ट्र के वर्तमान को संवारती है और भविष्य को दिशा देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की ऊर्जा, युवा प्रतिभा। कहा जाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उसके युवा होते हैं, क्योंकि संसाधनों का उपयोग करने वाली शक्ति युवा ही होते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने ठाना है तब तब दुनिया ने बदलाव देखा है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है। हमारे देश की बड़ी आबादी युवा वर्ग की है। यही युवा भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हीं के सपनों, संघर्षों और संकल्पों से विकसित भारत का निर्माण होगा। एक छोटी सी कहानी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक छात्र था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के लिए कभी बिजली नहीं होती थी तो वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। गांव के लोग कहा करते थे, अरे भाई इतना पढ़कर क्या करोगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वर्षों की मेहनत के बाद वही छात्र एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बना और देश के लिए महत्वपूर्ण शोध करने लगा। दोस्तों, ये कहानी केवल एक व्यक्ति की ही नहीं, ये उन

मेहनत के बाद वही छात्र एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बना और देश के लिए महत्वपूर्ण शोध करने लगा। दोस्तों, ये कहानी केवल एक व्यक्ति की ही नहीं, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो परिस्थितियों से लड़कर अपनी पहचान बनाते हैं। ऊर्जा का मतलब केवल ताकत नहीं होता, ऊर्जा का मतलब होता है नई सोच, नया उत्साह, बदलाव की इच्छा, जोखिम उठाने का साहस, कठिनाइयों से लड़ने का जज्बा। और यही सभी गुण युवाओं में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं। जब युवा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो देश प्रगति करता है, लेकिन जब युवा अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते तो राष्ट्र की बड़ी शक्ति निष्क्रिय रह जाती है। दोस्तों, आज भारतीय युवा हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। विज्ञान में युवा शोधकर्ता नई खोज कर रहे हैं, खेल जगत में हमारे खिलाड़ी विश्व मंच पर तिरंगा लहरा रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में भारतीय युवा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर स्टार्टअप की बात करें तो दुनिया में युवा उद्यमी लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज मोबाइल ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में युवाओं का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, देश केवल संस्कारों से और सरकारों से नहीं चलता, ये देश चलता है नागरिकों से, और नागरिकों में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है। जब कोई युवा ईमानदारी के साथ काम करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, समाज सेवा करता है, पर्यावरण बचाने का प्रयास करता है, तो वह राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। राष्ट्र निर्माण केवल संसद या मंत्रालयों में नहीं होता, राष्ट्र निर्माण गांवों, शहरों, स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं के विचारों से ही होता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को संबोधित हुए करते हुए कहा था, उठो, जागो और जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि यदि देश के युवा जाग जाएं तो कोई भी शक्ति भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, प्रतिभा होना एक बात है और उस प्रतिभा को सही दिशा देना दूसरी बात। आज युवा कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी है, तनाव है, सोशल मीडिया की लत है, नकारात्मकता है, आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन हर चुनौती के साथ अवसर भी छुपा होता है। यदि युवा अपने समय का सही उपयोग करें, निरंतर सीखते रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो सफलता निश्चित है। यदि आप और हम वास्तव में देश की ऊर्जा बनना चाहते हैं तो प्रतिदिन हमें कुछ नया सीखना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए और समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी हमेशा निभानी चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, वायु प्रकृति का वह अनमोल उपहार है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य भोजन के बिना कई दिन और पानी के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना हवा के कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। लेकिन बिना हवा के, और वो भी स्वच्छ वायु, होना बहुत जरूरी है, जीवन में सर्वोपरि है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज यही वायु प्रदूषण की समस्या हम सबको प्रभावित कर रही है। वायु प्रदूषण केवल किसी एक शहर, राज्य या देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण वायु की गुणवत्ता लगातार प्रभावित हो रही है। जब वायु में धूल, धुआं, जहरीली गैसें और अन्य हानिकारक कण सामान्य स्तर से अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह प्रदूषण प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में इसके अधिकांश कारण मानव गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है वाहनों की बढ़ती संख्या। दोस्तों, आज लगभग हर परिवार में दोपहिया या चार पहिया वाहन मौजूद हैं। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ा देते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिक इकाइयां। कारखानों और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है। कई उद्योगों में अभी भी प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते। तीसरा कारण है फसलों के अवशेषों को जलाना। कई क्षेत्रों में कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों में आग लगा दी जाती है, जिससे वातावरण में धुएं की मात्रा बढ़ जाती है। और चौथा कारण है जंगलों और पेड़ों की कटाई। जो पेड़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जब पेड़ों की संख्या घटती है तो वायु की शुद्धता भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाना, पटाखों का अत्यधिक उपयोग तथा ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक साधन भी वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण हैं। दोस्तों, वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषित हवा में लगातार सांस लेने से सांस संबंधी रोग बढ़ जाते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी और फेफड़ों की बीमारियां इसके सामान्य परिणाम हैं। हृदय रोगों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होता है। बच्चों के शारीरिक विकास और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। वायु प्रदूषण केवल मनुष्य को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र को एक संरक्षण के क्षेत्र में जो इनकी भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। युवा जागरूकता अभियान चला सकते हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और सामाजिक संगठनों के माध्यम से युवाओं की सक्रिय

भागीदारी वायु प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान केवल सरकारों के प्रयासों से संभव नहीं है, इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना चाहिए, छोटी दूरी के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करने की आदत विकसित करनी चाहिए, वाहनों की नियमित सर्विस करवानी चाहिए ताकि उनसे निकलने वाला धुआं कम हो, ऊर्जा की बचत करनी चाहिए और कचरे को खुले में जलाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली विकसित करना भी आवश्यक है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कभी आपने दर्पण यानी आईना देखा होगा। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो वह हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। ठीक उसी तरह साहित्य भी समाज का आईना होता है। समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं, यह सब साहित्य में दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि साहित्य आखिर है क्या? सरल शब्दों में कहें तो कहानियां, कविताएं, उपन्यास, नाटक, गीत और लेख, ये सब साहित्य का हिस्सा हैं। जब दादी नानी हमें कहानियां सुनाती थी, वह भी साहित्य था। जब हम कोई प्रेरणादायक कविता सुनते हैं, वह भी साहित्य है। जब कोई फिल्म समाज की किसी सच्चाई को दिखाती है तो उसकी कहानी भी साहित्य से ही जुड़ी होती है। दोस्तों, अगर हम किसी समाज को समझना चाहते हैं तो उसके साहित्य को पढ़ना या सुनना काफी होता है। उदाहरण के लिए, आज से 100 साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनकी समस्याएं क्या थी, उनके सपने क्या थे, इसका जवाब हमें इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि उस समय के साहित्य से भी मिलता है। यही कारण है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं करता बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। जब हम कोई अच्छी कहानी पढ़ते हैं तो हमें उसमें कहीं ना कहीं अपने जीवन का आईना दिखाई देता है। कभी हम किसी पात्र के संघर्ष से जुड़ जाते हैं तो कभी उसकी सफलता से प्रेरित हो जाते हैं। यही साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, समाज में जब कोई भी बुराई बढ़ती है, साहित्यकार उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से सामने लाने का प्रयास करते हैं। गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव, महिलाओं की समस्याएं, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, ऐसे कई विषय साहित्य में बार बार दिखाई देते हैं। और इन सब का उद्देश्य केवल समस्या बताना नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करना होता है। आज हम मोबाइल और इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं। लोगों के पास समय कम है और मनोरंजन के साधन बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी साहित्य की शुरुआत और जरूरत कम नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मोबाइल हमें जानकारी दे सकता है लेकिन साहित्य हमें समझ देता है। मोबाइल हमें खबरें दे सकता है लेकिन साहित्य हमें सोचने की शक्ति देता है। मोबाइल हमें व्यस्त रख सकता है लेकिन साहित्य हमें बेहतर इंसान बना सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जीवन में सफल लोग अक्सर किताबें पढ़ने की आदत रखते हैं। किताबें हमें नए विचार देती हैं, हमारी भाषा को बेहतर बनाती है और आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। एक अच्छी किताब कभी कभी वह सिखा देती है जो वर्षों का अनुभव भी नहीं सिखा पाता। आज की युवा पीढ़ी के लिए साहित्य और भी जरूरी हो गया है क्योंकि आज के समय में तनाव, प्रतियोगिता और भागदौड़ बहुत बढ़ गई है। ऐसे में साहित्य हमें मानसिक शांति

देता है। यह हमें जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, साहित्य का मतलब केवल मोटी मोटी किताबें पढ़ना नहीं है। आप अच्छी कहानियां पढ़ सकते हैं, प्रेरणादायक लेख पढ़ सकते हैं, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ सकते हैं, कविताएं सुन सकते हैं। यह सब साहित्य का ही हिस्सा है। यदि रोजाना केवल 10 या 15 मिनट भी पढ़ने की आदत बना ली जाए तो धीरे धीरे सोचने और समझने का तरीका बदलने लगता है, और यही साहित्य की असली ताकत है। कहा भी गया है, अच्छी पुस्तकें अच्छी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें ज्ञान देती हैं, प्रेरणा देती हैं और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से रिश्ते हमें बाद में मिलते हैं। दोस्त मिलते हैं, सहकर्मी मिलते हैं, जीवन साथी मिलता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है। वह रिश्ता है माता पिता का। जब हम इस दुनिया में आते हैं तब हमें बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। उस समय हमारे माता पिता ही हमारे पहले शिक्षक, पहले मित्र और पहले मार्गदर्शक होते हैं। माँ हमें 9 महीने अपनी कोख में रखती है, हमारी छोटी सी तकलीफ फिर रात रात भर जागती है। पिता अपने सपनों को पीछे रखकर हमारे सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि माता पिता अपनी ज़रूरतों को कम कर देते हैं, लेकिन अपने बच्चों की ज़रूरतों को कभी अधूरा नहीं रहने देते। दोस्तों, बचपन में जब हम गिरते थे तो सबसे पहले माँ दौड़कर आती थी। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो पिता हर संभव प्रयास करके उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई बार हम उन्हीं बातों को भूलने लगते हैं। आज के आधुनिक युग में जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। पढ़ाई, नौकरी, व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच कई लोग अपने माता

मित्रता के लिए समय निकालना भी भूल जाते हैं। सोचिए, जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, यदि बुढ़ापे में उन्हें सहारे की जरूरत हो और हम उनके साथ ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। माता पिता का सम्मान केवल उनके चरण स्पर्श करने तक सीमित नहीं है। उनका सम्मान तब होता है जब हम अपनी बातों को ध्यान से उन्हें बताते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कई बार बुजुर्ग माता पिता को पैसे से ज्यादा अपने बच्चों के समय और प्यार की जरूरत होती है। उनके साथ कुछ समय बैठकर बात करना, उनका हालचाल पूछना और उनकी छोटी छोटी जरूरतों को ध्यान रखना, यह भी सम्मान का ही एक रूप है। दोस्तों, दुनिया की हर संस्कृति और हर धर्म में माता पिता के सम्मान को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अर्थात माता को देवता समान मानो और पिता को भी देवता समान मानो। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की सीख है। आज जब हम सफल होते हैं, कई उपलब्धि हासिल करते हैं या समाज में सम्मान पाते हैं, तो उसके पीछे हमारे माता पिता का ही त्याग और संघर्ष छुपा होता है। कई माता पिता आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कभी रुकने नहीं देते। वे खुद साधारण जीवन जी लेते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनका सम्मान करें, उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करें।

दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, हमारा वातावरण स्वच्छ हो और आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुंदर पृथ्वी मिले। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकारों या बड़े संगठनों की ही है? नहीं, इसमें हम सब की बराबर की भागीदारी है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मिशन लाइफ की शुरुआत की गई। लाइफ, LIFE का पूरा नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसे छोटे छोटे बदलाव करें जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये सच नहीं है कि बड़े काम करने हैं, लेकिन हम छोटे छोटे बदलाव भी कर सकते हैं जिससे बड़ा असर पैदा हो सकता है। जैसे घर से निकलते समय अनावश्यक बिजली के उपकरण बंद करना, पानी का उपयोग सोच समझ कर करना, प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के बैग का उपयोग करना, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का प्रयोग करना। ये देखने में छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब करोड़ों लोग इसे अपनाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही है। कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं पानी की कमी हो रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हमें चाहिए है अपनी आदतों में भी बदलाव हमने नहीं किया, तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संबंधी समस्याएं और भी गंभीर हो जाएंगी। इसलिए मिशन लाइफ हमें उपभोक्ता नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। आज के समय में हम अक्सर आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं, कभी खाना बर्बाद करते हैं, कभी पानी व्यर्थ बहा देते हैं, कभी बिजली की अनावश्यक खपत करते हैं, लेकिन मिशन लाइफ हमें सिखाता है कि प्रकृति के संसाधन सीमित हैं और उनका उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों, मिशन लाइफ हमें यही सिखाता है कि विकास हो लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। तो युवा साथियों, आइए संकल्प लें कि पानी की एक एक बूंद बचाएंगे, जीवन का उपयोग बिजली के बचाने से और जिम्मेदारी को अपने बढ़ाने से करेंगे, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे। याद रखिए, बड़ा जीवन हमेशा बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होता है।

कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में जन्म हुआ था महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चलकर आजाद हिंद फौज की नींव मजबूत करने में योगदान दिया। आज के दिन 25 मई 1915 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। बाद में यही आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। आज ही के दिन पूरी दुनिया में अफ्रीका दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 1963 में अफ्रीकी देशों के संगठन की स्थापना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। इतिहास केवल बीते कल की कहानी नहीं बल्कि आने वाले कल की सीख भी है।

अभी आप कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सिराय की। 6:30 पर प्रादेशिक समाचार होंगे हिंदी में हमारे जयपुर केंद्र से। 6:40 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 6:45 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी समाचार हमारे जयपुर केंद्र से। कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा शाम 7:00। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे जानकारी अंतरा शस्य मिलवा खेती, चूहा नियंत्रण कैसे करें, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, इसके अलावा मौसम व बाजार भाव। आज के कार्यक्रम के प्रस्तोता होंगे रमेश चावरिया।

7:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम रहेगा एक ही फिल्म से। स्पोर्ट्स कैन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर।

9:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली के अंदर से आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। रात्रि 10 बजे खेल जगत हमारे जयपुर केंद्र से। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

अभी आप हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

ढोक माहिती। सामयिंद खिदमत डीएस संधूदा आदाब। सामयिंद सब कोनो पहलू पेशे असाड़े आज दे प्रोग्राम दी तफसील। प्रोग्राम दा आगाज हो सी ख्वाजा गुलाम फरीद दे सूफियाना कलाम दा जैको पेश करे सुन साईं सलीम इकबाल। इकनो बाद साईं राजकुमार मलिक इंसान दे बुनियादी हकूक दे मौजू ते अपना एक तफसील जायजा पेश करे सुन। साईं खैर मुहम्मद दा कलाम पेश करे सुन भगत गज्जन ते प्रोग्राम दे आखिर च साईं गुनशान दास दी आवाज च ख्वाजा गुलाम फरीद दा हिक डोड़ा। सामिन इतिहाई असाड़े आज दे प्रोग्राम दी तफसील। सामिन हुन समात फरमाओ साईं सलीम इकबाल दी आवाज च ख्वाजा गुलाम फरीद दा सूफियाना कलाम।

आप तू अपने बनाया मेहरबानी है तड़ी, कुर्ब मैं थे तें फिता कतरदानी है तड़ी। सामिन एहान भगत गजन जिन्हें कने तुस सुनते पहावे सही खैर मुहम्मद का कलाम। प्रोग्राम दे आखिर च सामिन समाप्त फरमाओ सही गुन श्यामदास की आवाज़ च ख्वाजा गुलाम फरीद का एक डोर।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस साल के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायलिन वादन के दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिन जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें प्रदेश के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। श्री भील को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सत्रह अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव में जन्मे तगाराम भील ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से अलगोजा वादन सीखना शुरू किया। तगाराम ने उस्ताद अकबर खान के सानिध्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तगाराम ने पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में कला के रंग बिखेरे। उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवाजा जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने

0: 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भूमिका निभाकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का भी हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल 3 प्रमुख बांधों ईसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बंद बारेठा बांध पर भी जल पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगोद में, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में, विधायक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में और विधायक शैलेश सिंह ने डीग में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड पर, बारां के मनिहारा तालाब पर, डूंगरपुर में गैप सागर पर, बांसवाड़ा के माही माता मंदिर पर, सिरोही और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को पानी बचाने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि अभियान के तहत 5 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आज जयपुर पहुंचे। वे सांगानेर एयरपोर्ट से सीधे आमेर महल घूमने गए। महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। इस दौरान उन्हें आमेर के शीश महल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और मावठा झील के बारे में बताया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री करीब आधा घंटे तक आमेर महल में रुके। उनका आज रात जयपुर में रुकने और कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने टिकाऊ और कुशल राजमार्गों के निर्माण के लिए समय पर परियोजना वितरण, कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर रहेंगे। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महिला बैरकों का ई उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। उनका बीएसएफ जवानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी

0: अब से कुछ देर बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीकानेर पहुंचकर गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत राज्य में परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अनुसार छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए बूंदी और सीकर में दो नए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी सुविधा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। राज्य के अधिकांश हिस्से आज लू और गर्म हवाओं की चपेट में रहे। कुछ जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित सरहदी जिलों और पूर्वी जिलों में लू का प्रकोप रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं।
1: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू और गर्मी के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। केंद्र ने कल जैसलमेर और बालोतरा में लू का ऑरेंज अलर्ट जबकि 18 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के आखिर में कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के डॉक्टर राकेश नागर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रचंड गर्मी के दौरान शरीर में पानी की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
2: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए। जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पना, कैरी का पना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
0: रेलवे ने ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये गाड़ी 29 मई से 27 जून तक साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीमका थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट सहित विभिन्न स्टेशनों पर राव करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात फिटनेस की। फलौदी जिला पुलिस ने कल संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इसके तहत पुलिसकर्मी थानों से साइकिलों पर रवाना हुए। उनका काफिला मेजर शैतान सिंह

0: स्टेडियम पर पहुंचा। एएसपी ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि स्टेडियम में योग सत्र रखा गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न तरह के योगासनों का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पानी बचाने के कामों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अभियान से पहले तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को नियमित रूप से प्रगति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। 29 वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों से हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और जरूरी कॉल होने पर सुरक्षित जगह रुककर बात करने की सलाह दी गई। जिले में गैर संचारी रोगों एनसीडी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से ये परियोजना शुरू हुई है। CMHO डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट नाम की इस परियोजना में 30 साल से अधिक की आयु के लोगों की 10 तरह की जांचें निशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से गैर संचारी रोगों की जल्द पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। जिले में प्री डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक शशांक दवे ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 8,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थी थे। परीक्षा में 84% से अधिक उपस्थिति रही। विभिन्न फ्लाइंग दलों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फलौदी में पिछले दिनों पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 1 किलो से अधिक MD बरामद की गई। ये कार्रवाई बाप क्षेत्र के मोड़गिया गांव में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर करीब 30 किलो से अधिक की ड्रग्स बनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी में रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बालोतरा और पोकरण मार्ग पर 3 नई बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई परिवहन मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इससे आसपास के गांवों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही नई बस सेवाओं के शुरू होने से महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलौदी रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया। नागरिक सुरक्षा के लिए हुई इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस दल के साथ स्काउट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों की टीमों ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फलौदी और बाप क्षेत्र का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने खराब हैंडपंपों और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावा समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोंक जिलारा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। काल सांचू सीमा चौकी माथे प्रहरी सम्मेलन में शामिल फैला। और नौतपा सरू भवन सागई प्रदेश

0: माय गर्मी रोजोर और बध्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान री तीन प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार देर नवाजा। इस साल रा पहला नागरिक अलंकरण समारोह में 2 जना ने पद्म विभूषण, 6 ने पद्म भूषण और 58 हस्तियां ने पद्मश्री मानु नवाजी चा। देवलोक व्या फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने कलारा हलका में योगदान सारू पद्म विभूषण नवाजी चा। वायलिन बजावन वाला दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम ने पद्म विभूषण सम्मानित करी चिया। पद्मश्री नवाजी जावन वाली हस्तियां माए प्रदेश रा भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा बजावन वाला तगाराम भीली शामिल है। सत्रह अप्रैल 1960 ने मूल सागर गांव में जन्मिया तगाराम ढांडा चराता थका। मारा पिताजी 7 साल री उम्र में अलगोजा बजावन री सीख लेवण शुरू कीनो। तगाराम उस्ताद अकबर खान आला दर्जा री सिखावण हासिल कीनी। वह डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल समेत न्यारा न्यारा मौका माथे कलारो दर्शाव कीनो। तगाराम पर्यटन विभाग री ओर न्यारा न्यारा देशा माए राखी जिया कार्यक्रम माई कलारा रंग बिखेरिया। माने राजस्थान पर्यटन विभाग समेत न्यारी न्यारी संस्थावां कान्यो नवाजी चिया। राष्ट्रपति भवन माए राखी जिया जलसा माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मान्योड़ा लोग मौजूद रहा। ध्यानजोग है कि साल 2026 सारू 131 पद्म पुरस्कार दिया जावना है, जमाए 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। मान जलसारा दूजा दौर माए और हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवासी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गंगा दशमी रे मौके टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। मुख्यमंत्री बीसलपुर बंधा माथे रीति रिवाज जल पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि पानी जिंदगी री बुनियाद है और इन्हें बचावन सारू आ खास पहल है। मुख्यमंत्री जनताओं ई अभियान में शामिल भेर पानी बचावन री मुहिम ने सफल बनावन री अपील कीनी।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ईसरदा बंधारोई हवाई सर्वे कर पानी न बचावन वाणा प्रबंधन और पाणा तू जुड़ी परियोजनावां रा कामां रो जायजो लीनो। ध्यान जोग है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना रो फीडर चैनल तीन खास बंधा ईसरदा, गलवा और बंध बरेठा निकला है। मुख्यमंत्री भरतपुर रा बंध बरेठा बंधा माथई जल पूजन कर अभियान री शुरुआत कीनी। ई मौके वे राज्य में पानी बचावन और पारंपरिक जल स्रोता ने और बेहतर बनावन रो राज्य सरकार रो वायदो दोहरायो। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत कई कार्यक्रम राखी चिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिला रा सांगोद माए, देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली माए, विधायक राजेंद्र भांबू झुंझुनू माए और विधायक शैलेश सिंह डीग माए ई अभियान री शुरुआत कीनी। हनुमानगढ़ रा लखुवाली हेड, बारा रा मनिहारा तलाव, डूंगरपुर माए गेप सागर रिपाल, बांसवाड़ा रा माही माता मिंदर और सिरोही और बालोतरा समेत न्यारी न्यारी ठोणा पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राखी चिया। ई मौके जनता ने पानी बचावन री शपथ ही दिराई ची। ध्यान जोग है कई अभियान रा तहत 5 जून ताई आखा राज्य माए पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राख्या जावेला। गावा माए कूड़ा बावड़ियां, तलावा और पानी रा दूजा स्रोतां री साफ सफाई, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधा रोपण सरीखा कार्यक्रम राख्या जावेला।

0: हर सप्ताह चलाई जावेला। आ रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट वहती जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना तहत ऑनलाइन अर्जी देवन सारू पोर्टल काल 15 दिन सारू खोलियो जावेला। देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज पाली माए आ जानकारी टीनी। वे बतायो कि योजना तहत बुजुर्गों ने रेल और हवाई जहाज रे जरिए मुफ्त तीर्थ करायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक फेरू सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। और नौतपा सारू वेवन सागई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। सागई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तोता हैं रमेश चावरिया।

राम राम शाह। कार्यक्रम चौपाल सुनने सगले परिवारा ने आज भाई रामेश्वर का घणा घणा राम राम, मोकड़ा मोकड़ा राम राम। भाई लोगो, आज हूँ कार्यक्रम ले हाजिर हूँ चौपाल, और आज आप बात करांगा खेती पाती की। और अब मौके सर जो को टेम चालन आ रही है इंगी, क्योंकि आज 25 तारीख होगी और 25 तारीख का दिन आज नौ तपो जो को है वो शुरू हो गयो। यहाँ केस का कि गर्मी जकी नौ दिन पड़ेगी जचा आगे तपगो, और अपने जकी साधारण भाषा में जिके मैं क्या देख रहा कि एकदम ढान वाली जकी गर्मी है बा नौ दिन तपेगी। तो ये गर्मी में माँ अपन है थोड़ा सो ध्यान रखना जरूरी है। और बिया भी अपना जगह स्याणा मैंने क्या करे कि ये नौ दिन ना तपे नहीं तो क्या अपनी जकी फसल है वहाँ पर भी इंगो जो असर है वो पड़े। ये नौ दिन जगह है बे अपना अपने जगह किसान भाइयों के लिए अपनी खेती किसानी के लिए बड़ा फायदा है। तो ये नौ दिन जगह है भैया, तो क्या करें कि दो मूसा दो कातरा, कह दो मूसा दो कातरा है, दो तीड़ी दो ताप है, दो की बाजी जल हरे है, दो विश्वर दो वाय। यानी दो मूसा यानी ए नौ तपा का माँ पहला दो दिन जगह है, अगर बाद दिन जो कि गर्मी है वह ना पड़े या फिर लूज की ना चले तो मूसा यानी चूहा जका है ऊंदरा जका है बंगी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपनी जी फसल है बे नष्ट होने के कगार पर भी आज का, क्योंकि आप देखेगा रानी का आपनी जी की फसल है बे ज़्यादातर चूहा जका है बाना नष्ट करने की हिमाकत कर दिया है, हिम्मत भी रख है और नुकसान भी अपन बहुत बड़ो है। तो ये दो दिन जका है लोग अगर शुरुआती दौर का जगह ना अगर चलेगी लू ना तपेगो तो ऊंदरा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपनी फसल ने नुकसान भी पुका सके। तो किसानों के लिए मानस कहाँ के जगह पहला दो दिन है वे नो तपगा बड़ा फायदा वाला है। और इनके अलावा जहाँ दो कातरे की बात करें तो कातरों तो थे जाना ही हो, जानी जान किसान हो खेती किसानी आप करें यहाँ का कातरों एक लट है जिकी बहुत बड़ी हुए आंगली जितनी जाडी एक लट हुआ जकी ऊपर छोटा छोटा बाल सा हुआ है ना। तो बा कातरों जो है वो पूरी फसल ने नुकसान करे है, पूरी फसल ने चौपट कर रखे है। कई बार आप देखे करा अगर ये आपने दो दिन ना चल लू या ना तपे ना गर्मी पड़े तो कातरो ही तो ज़्यादा हो जाएगा का अपनी फसल ने भी इन चीज़ को नुकसान है, अपनी जो फसल है बिंग जो की उपज की है बा भी घट जाए। तो कातरे ने खत्म

करना को एक इन नोतपा में मांस का कारण है। और इनके अलावा जो का दो तोड़ी तिड़ी की बात कर ला तो पांचों और छठे दिन अगर गर्मी ना पड़े नहीं तो कह टिड्डी जिकी है बापा देखे करानी की एक बार टिड्डी जिकी है वह अपने छिपता पासू आए करे डार की डार। और टिड्डी की तो नुकसान इतो बड़ो है कि मिनटा मा कई बिगा कई मुरबा काफी रकबो चुके है क्षेत्र चुका है वो नष्ट करना है। तो टिड्डी गो जो को दल है अब ई टेम की है क्या नौ दिन गामा टिड्डी जका है भी अंडा आपका देसी बिंगवा अंदर जका बच्चा है भी पैदा होगा और क्या है।

काफी रकबो जो है, क्षेत्र जो है वो नष्ट करना है। तो टिड्डी गो जो को दल है अब ई टेम की है क्या नौ दिन गामा टिड्डी जका है बे अंडा आपका देसी बिंगवंदर जका बच्चा है बे पैदा होगा। और क्या है श्याणा मी ने कहा बात कि वह कह एक रात में अगर टिड्डी कट्ठी डेरो डाल लिया 10-15 या 20 भी डाल लिया तो वे दिन उगे जब उठे नहीं तो हजारा में हुए लाखा में हुए भंग कोई या मांस का कोई माप कोनी नहीं, कोई गिनती कोनी, कोई संख्या कोनी नहीं। तो ये जका दिन है आपने टिड्डी ने खत्म करना का दिन भी अपना मांस खान है अगर ये ना तपे तो ईशु की है क्या टिड्डी जिकी है वह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और टिड्डी तो देखो सा आपने कोई भारत की बात कौन करानी, आपने राज्य की बात कौन करानी, वो तो पूरे जक्की क्षेत्र का माँ भी पुगेगी नहीं। बट है के फसलां है, के दरखत है, के झाड़खा बोझा है, सारा ने सपन पाट कर दिया की कौन छोड़े नहीं। तो टिड्डी भी बहुत बड़ो एक दुश्मन माना किसान को। और इनके अलावा जहाँ दो ताप की बात करें तो अगर सातवें और आठवें दिन अगर तेज़ गर्मी ना पड़े तो फसलों में जी बीमारियाँ लग है बंग में जगह कीटाणु है भूमि जनित जगह कीटाणु विषाणु जगह है बे भी इतना ज़्यादा बद जाए और बंग जी की संख्या भाई इतनी ज़्यादा हो जाए का अपनी जी खड़ी फसल नुकसान पुगा दे। तो यह मांस का कह ये जगह नौ दिन है यह अपनी फसलों के लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है का अपन ने इन गर्मी के मौसम का माँ तेज तपेगो तो ज़्यादा अपन चोरी छाती करके अरे बारह कौन निकलनो नहीं, अपन पूरा ध्यान रखना है क्योंकि थे सुन ला रहे हो सो कह कई जगह अपने जगह गर्मी ताप घातकी चपेट में आ गया भाई लोग और बे अभी पांगरिया भी कौन नहीं। तो अब छाणा मिनक तो बने अपा मानस कहाँ के एक गर्मी को सामनो ना करे, गर्मी से बचाव करनो जरूरी है। और बचाव वो है कि आप सिर ढक के निकलां बारे हाथ मुंह जो कह है बे अच्छी तरह ढक के निकलां और की भी तरह की लापरवाही अपन करनी कोनी। जब भी आप घर से बाहर निकलां नहीं तो कि खा पी के निकलां कि पेट का माँ थोड़ सो कुवे निकले वो करेड़ो तो बहुत ज़्यादा अपन ने कह के गर्मी जी की अपना नुकसान कौन पुगा नहीं। इनके अलावा आपने जगह छोटा टाबरी है बांगो खास करके ध्यान रखनो है। छोटा टाबरियाँ का सागा सागा अपना जगह बुजुर्ग इंसान है अपने ग्रेज का बडेरा है बंगो भी पूरा ध्यान रखना है क्योंकि जिया जिया इंसान जो है वो उम्र दराज हुए नहीं तो बिंग की इम्यूनिटी पावर जी की है रोग प्रतिरोधक जी की क्षमता है वह भी थोड़ी सी घटती जा रहा है ना। तो अपा मानस कहाँ के आ गर्मी जिकी है बा आंती भी खराब ना करे और आ गर्मी जिकी है मौके सर जो कि लू चालन आ रही है बा भी बा ना खराब करे। तो बने भी एक बार झापड़ थापड़ करके माँ रखो थोड़ी सी ठंडी जगह सही जगह रखो और पानी जो है वो अपने घड़े को साफ सुथरो ताजो पानी पीनो जरूरी है। बर्फ को जो पानी है वो साधारण पर आपने किया कि घरे जागे सी दो बारों ताड़ों से तपेड़ो सिर है डील जो है वो जागे अपने बर्फ फड़ो वो फ्रिज खुले और बिंग में बर्फ निकाली घोड़ो और पियो तो वो भी एक बहुत बड़ो नुकसान है। खान पान का मैं पूरा ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि जकी गर्म हो तासीर हुआ है बर्फ या जानो थे बर्फ जकी अब ठंडी को नहीं बिंग जी तासीर है ना गर्म हुआ है तो अपने पानी जो है वो गुणगुणों घड़ा जो ठंडो पानी है वो पीणो है। और जब भी बारह निकलना तो कन्या पानी की व्यवस्था जी की है वह करके निकलना जरूरी है सा। इनके अलावा आपने जगह आसा पास का छोटा मोटा जिनावर है पखेरू जगह है जगह पशु पक्षी है बंगे लिए भी चुगे पानी की व्यवस्था करनी जरूरी है क्योंकि मिनख जो है वो तो सियाणु है वो तो आपकी व्यवस्था कर सके हज़ार तरीका से कर सके लेकिन जगह जिनावर है बंग की व्यवस्था है वह अपन ही करनी है। जट्ठे भी अपने कन कोई छोटो मोटो कोई भांडो बर्तन माटी को है तो दिन उगे अपा बिंग में पानी भर के छोड़ देवा और बाद में दो पैर गमा अगर वो पानी तातो हो जाए तो फिर अपा वो पानी बदल देवा तो छोटा मोटा पखेरू जो कहे पानी पी ले क्योंकि ये भी प्रकृति का अंग है और आपनों जो को जीवन है वो प्रकृति पर टिकड़ो है और प्रकृति जी की है वह जी जिनावर पर ये जगह पशु पक्षी यहाँ पर पेड़ पौधा पर आ पर टिकड़ी है आप आते समझो। और बात आई पेड़ पौधा की अब आप समझ ला रहे हाँ कि पेड़ की जी अहमियत जकी है ना वह कितनी है। कई बार आपने लाइट उड़ जाए नहीं तो हो तो वह मचा दिया घर का कि हो अब की हो सी लेकिन जब पेड़ अगर अपना सपस है तो भट्ठे फिर आपने इन्हें बिना कौन देखना पड़े नहीं। तो मोटी सी बात आई है कि जट्ठे भी कोई खाली जगह दिखे नहीं तो भट्ठे कोई पेड़ जरूर लगाओ पुनगो भी काम है और प्रकृति ने संभालना गो प्रकृति ने बचाना गो भी काम है। तो पेड़ पौधा अगर धरती परोसी नहीं तो अब आज की गर्मी है इंगो जो को ताप है वो भी कम होएगा सा। बाता चीता आप और भी करांगा पण अपा एक भजन सुन लिया लियो थे भी सुनो ओ भजन।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिल्कुल सा थाने संदेश उपलाम भजन सुनायो मीरा को भजन और बात करा पा अपने पशुधन का बारे में और खेती पाती के सागे सागे क्योंकि आप जाना के पशुपालन भी आप करा और पशुपालन आपने एक सहायक धंधा के रूप में भी आप बिन करा क्योंकि इनको दो रोज को मुनाफा है वो आपने मिल जाए। कई बार खेती पाती में थोड़ा बहुत कोई ऊंच नीच हो जाए नहीं तो पशुधन से अपनी जी की आमदनी है बस चलती रहे और विश्व अपने फायदों भी है। तो आप बात करें जी बकरी पालन का बारे में और बकरी पालन जो है वो बड़ो शांतरो और बढ़िया एक व्यवसाय मांस का धंधो मांस का कहीं माँ कोई ज़्यादा इन्हें भी ना कौन देखना पड़े नहीं और इंगी जी की शुरुआत है बा कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी अपन कौन करनी पड़े नहीं कोई 10 बकरियां थी 11 बकरियां थी अपन ले आगे कर सका और बढ़िया जिकी उच्च गुणवत्ता की जिकी नस्ल वाली बकरियां है बंगू अगर पालन करा तो भी चूंकि है का अपनी जिकी आमदनी है बा भी बढ़ जाए और मौके सर आपने पीछे टक्के की भी जरूरत पड़ जाए तो आपने इन्हें भी ना कौन भाजनो पड़े नहीं क्योंकि एक तरीके से देखा नहीं तो कह सैणा अपना जका बुढ़िया बुढ़ेरा जका बकरी पालन करता जका ग्वालिया हा ब्या बात कहन था कि इन तो बकरी पालन जका कर रखे है वो तो कह गली में खड़ गए भी पीसा बांट सके है ना तो जेब में भी आप इन्हें बैंक करते रहे मांस का और एक गरीब गो या मांस का के गाय के रूप में भी आप प्रसिद्ध है बकरी कहेंगे जो को दूध है ना वो बड़ो गुणवत्ता वालो है इन माँ जकी पौष्टिकता है इन माँ जकी अच्छा पोषक तत्व है जका स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद है। और कई बार हरी बीमारी हो जाए कोई थोड़ा बहुत डील डोल में कोई यहाँ लागे कह ऊंच नीच है तो बकरी को जो को दूध है ना वो डॉक्टर सुझाव है कह प्याणो चाहिए है इन माँ हजार तरह का अपने पोषक तत्व है जका अपनी खाना पूर्ति जी किया हुआ डील का माँ अगर कोई कमी है तो वह पूरी कर दे और बकरी पालन जो को है वो व्यवसाय बढ़िया है अपन करनो भी चाहिए और मौके सर देखा नहीं तो आपने 9-10 एक बकरियां जकी है बेले आगे भी आप कर सका और अच्छी नस्ल की बकरियां हैं बंगू चुनाव करनो जरूरी है जहाँ ब्लैक बंगाल नाम की एक नस्ल जकी है वह बहुत बढ़िया है जमुनापरी है सिरोही है बर्बरी है और इनके अलावा जहाँ तोतापरी जी की बकरी है वह भी बहुत बढ़िया है अमृतसरी जी की बकरी है बिंग जी की कीमत है बिंग जो कद है वो भी बहुत मायनो रखे आपके हिसाब से तो हम कोई भी एक नस्ल ले गया अपा पार्स का इनके लिए कोई मौसम कोई ज़्यादा मायनों को रखा नहीं है जबकि बकरियां हैं भी हर मौसम में हर जगह पर आपको क्या है जीवन अपन सही तरीके से कर सके अपन मुनाफो दे सके। अब रहने की व्यवस्था की बात करा तो कोई ज़्यादा लंबो चौड़ो अपन कोई जगह या फिर कोई बाखड़ है या फिर प्लाट जो है वो अपन लेने की जरूरत कौन पड़े नहीं जितनी बकरियां हैं बिग हिसाब से अपन कोई शेड है कोई छपरों जो है वो घरे तैयार कर सकें बाड़ो जो है वो अपने आस पास जटे भी खाली जगह बैठा तैयार कर सकें तो जटा थोड़ी सी ऊंची जगह है पानी की जकी निकासी है बैठे बढ़िया होनी जरूरी है जटा बकरियां आप राखनी है और इनके अलावा जटे आप शेड बना ला रहे हैं जटा बाड़ो बना ला रहे हैं बैठा छाँव की जकी व्यवस्था है वह भी होनी चाहिए आस पास पानी की जकी व्यवस्था है वह भी होनी चाहिए और हवा की आने जाने की जकी व्यवस्था है वह भी बढ़िया होनी चाहिए। कई बार आप की है कि आपने जगह भाई लोग बकरियां पालन कर ले घर छोटो मोटो है और आस पास मोटी मोटी दीवारें हैं तो बंग माँ बकरियां जकी है बेरोड़ के छोड़ दे तो भी शुक्र है कि ज़्यादा अपन कोई फायदो कौन है कई बार बकरियां जकी है बीमारी भी हो जाए बन अच्छी शुद्ध हवा जकी है वह भी कौन मिले नहीं कई बार आप देखे करा कि बकरियां जकी है बे छाँव की कमी की वजह से भी बीमार हो जाए मर जाए कई बार तो अपन आ बातों को पूरा ध्यान रखना है कि अगर बकरी पालन करना है तो अपना कन ये जी छोटी मोटी व्यवस्था है थोड़ी सी होनी जरूरी है जट्ठा पा बाड़ो बनावा नहीं बा एक तो जगह थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए कि ज़्यादा ऊंडी जगह कोई टोहा के अंदर दलडा के अंदर या फिर कोई नीची जगह पर अपन नहीं बनाना है ताकि कोई बरसात को पानी है या फिर आस पास गलियां को जो को पानी है वो अपने

पाड़ा का मान ना आवे, अगर बरसात को पानी है तो वो आवे भी तो डर के नीचा आ जाए, तो बकरियां नुकसान को नहीं होनी। और इनके अलावा जी छाया है वह भी पूरी बढ़िया तरीके से होनी जरूरी है। 10 बकरियों के लिए लगभग 150 से 200 स्क्वेयर फुट गए आस पास की जगह की जरूरत पड़े, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा जरूरत कौन पड़े नहीं। तो अपने बकरी पालन के लिए शेड तैयार करना चाहिए। और इनके अलावा खाने की व्यवस्था की बात करें तो खानों तो बिया देखा नहीं, तो अपना जगह भाई लोग अभी इन्हें बिना घुमागे भी चरागे भी लिया के, अगर कोई शो भी क्षेत्र है जैठे चरण की व्यवस्था ना है तो अपने क्या के घरे जो ग्वार को नीरू है या फिर कोई दूसरा नीरू है वो मौके से भिड़ो करके और घरे राक्ष का तो बीच भी अपा क्या का अपनी जगह बकरियाँ हैं भी दपास का। और ज़्यादा महंगो भी कोने नहीं, क्योंकि इनके अलावा जहाँ आस पास कोई छोटा मोटा दरखत है तो बंगी की पत्तियां है या फिर कोई और कोई टहनियाँ हैं जिसकी अपन भिड़ी कर सकें बाद में फिर भी बकरियां ना पखवा सकें, तो बीच भी की एक बकरियां जिकी है वे आपो जीवन अपन कर सकें। और दवा दारू जिकी है बा करनी जरूरी है। बकरियां का माँ की है कह रोग जो है वे थोड़ से ज़्यादा लागने की संभावना रहे, क्योंकि कई बार आप देखें फड़किया जो को रोग है गुड़गट्टू जो का रोग है वे ये बड़ा नुकसानदायक है। तो आंगो जो को टीकाकरण है वो भी अपन हर 6 महीना बाद गमा करवाना चाहिए। पानी जो को है वो साफ़ सुथरों अपने बकरियां पियानो चाहिए। अगर साफ़ सफाई रखांगा नहीं तो ज़्यादा बीमारियां जो की है ज़्यादा कीटाणु विषाणु जो कहे भी अपनी बकरियां में अपने जो पशुधन है भी उनको लगे नहीं। अगर फिर भी ना भी लगे नहीं तो भी वो टीकाकरण जो को है वो करवाना जरूरी है। इनको कोई ज़्यादा पीसो टक्को भी कौन लागे नहीं, अपना जगह नज़दीकी डॉक्टर जी है बांसू भी आप संपर्क कर सकें या फिर कोई जानी जान अगर कोई ग्वालियो है भेड़ पालक भाई है बकरी पालक भाई है तो बीच भी आप के जानकारी ले सकें। बकरी पालन करनेगी बिना जगह तौर तरीके है बिन संभालनेगी बिन खुआना पियानेगी बिना आहार की तो अपन बेहतर जानकारी भी मिल सके। और इनके अलावा अगर आप अच्छी नस्ल की लिया सकें तो बकरियां जी की है कि तो तीन तीन चार चार बच्चा भी ले गया हुआ है दो दो बच्चा भी ले गया हुआ है। तो बकरी पालन जो को है वो बड़ो बढ़िया है। और बकरी को जो को दूध है वो भी अच्छी कीमतों पर बिक है क्योंकि पौष्टिक दूध मानी जाए और जठा जरूरत है बठे ये दूध की जो कि आवागमन जो को है वो करे और अच्छा मुनाफा में अपने के कर वो धंधो जो को है ल्यास के। तो बकरी पालन अपन करना चाहिए, कोई ज़्यादा 300 टके भी जरूरत कौन पड़े नहीं। अगर आप 2-4 बकरियां भी ले आगे कर सें तो हर 6 महीना बाद का माँ किया बढ़ोतरी हो जाए। अगर आप सही तरीके से मांगी साल संभाल करता रहे मांगू लालन पालन करता रहे तो दूध भी बिके बने मांस के तौर पर भी बेच गए अगर आप मुनाफो कमा सकें। और अच्छी नस्ल की अगर कोई बकरियाँ हैं तो बंगा जका माना के मादा के अलावा नर जका बकरा है बने भी बेच गया अपा कोई नस्ल वालों कोई रेवड़ है या फिर किन्नी आपा देश का तो बीच की अगर नस्ल की बढ़ोतरी भी हो जाए अपन मुनाफो भी हो जाए और अच्छा दाम भी बढ़ सके। तो बकरी पालन करना चाहिए क्योंकि सहायक धंधा के रूप में भी वो बढ़िया एक व्यवसाय माना और ज़्यादा कोई खेचल कोनी ज़्यादा कोई पीसो टक्को कोनी परिवार का छोटा मोटा रलगे थोड़ी बहुत खेचल करे नहीं तो बकरी पालन बढ़िया तरीका से कर सके। पर आप एक गीत सुन लिया शमसुद्दीन गी आवाज़ गवा लकी बन जा रहा ना लियो थे भी सुनो।

बिल्कुल सर, शमसुद्दीन की आवाज़ गवा थाने गीत सुनायो। बात करें आप जैविक खेती के बारे गवा, क्योंकि काफ़ी समय से भी अपने आकाशवाणी सूरतगढ़ गवा वो कार्यक्रम चौपाल आवा है वहीं और खेत खलिहान गवा खेती हरा वास्ते गवा थाने बताई करा कि अब धीरे धीरे जो को रासायनिक तरीक़ों है खेती को अपन छोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे की है कि अपन जैविक जगह तरीका है खेती का भी अपनाना पड़ेगा। इश्यू क्या है कि आपनों बहुत सो जो को नुकसान है वो आने वाले समय में होना है तो वो अपन बचा सका, और जैविक जगह तरीका है भी अपने फायदा का सौदा है। कोई ज़्यादा कोई अपन ने कोई ने भी ने खेचल कौन करनी पड़े नहीं, कोई ज़्यादा अपनों पीसो टको कौन लगे नहीं, लेकिन इनका फायदा ज़्यादा है नुकसान कम है और खेचल भी कौन नहीं। लेकिन रासायनिक जगह तरीका है बिना तो नुकसान आप देख नहीं ला रहे, आना थाना बताने की जरूरत भी कौन नहीं, क्योंकि थे जाने जानो इस चीज़ का आपा सब भुक्त भोगी हैं इस चीज़ का कि जगह पर रासायनिक तरीका अपना के खेती कर ला रहे हैं बिना जगह लक्षण जगह है बिना जगह प्रभाव है और बिना जो को परिणाम है वो अपने देखने मिलने आ रहे हैं। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी है, बहुत से ऐसा कारण जगह है भी आपने प्रकृति जी की है बिना खिलाफ होना रहे हैं और आपनों जो को माटी को जो को स्वभाव है वो भी बदल

ला रहे हो धीरे धीरे। और इंगा कारण जका है भी आप खुद ही हाँ कोई अपने इन्ने भी नशियों आ गए आप कौन कर ला रहे हैं, क्योंकि आपने जो को काम है नहीं वो है कि आप अपनी प्रकृति ने बचावा, प्रकृति के सागे सागे अपनों जो को जीवन है वो आप बचावा। और धरती जकी है बिन तो बचानी है, ऐसा धरती है तो मिनख है प्रकृति है, अगर ये चीज़ ना है ना तो फिर की कौन है नहीं। ज़्यादा लालच के चक्करों में माँ की है कि आप कोई ज़्यादा मोटो बचबेड़ी खा बैठागा, आने वाले समय में माँ अपनी जी पीढ़ी है बा इसी हो जाएगी कि अपन तो के देखा ना देखा ये चीज़ की आगे की बात है, लेकिन दोष आपा ने जरूर लगोगे भी चीज़ को। तो ये वास्ते आप आई बात कहाँ कि जिकी खेती कर ला रहा ना शुरुआत बैठे से ही अपन करनी पड़ेगी कि आप जैविक तरीका अपनाना जरूरी है। और अपना जगह बायलोग है नहीं बे अब सब्जियां जी की बीजांत कर रखी है तो बिंग माँ भी जगह रासायनिक तरीका है बे बड़ा नुकसानदायक है अपना सामना ला रहे है, क्योंकि सब्जियां जिकी है बे सीधा तौर पर आपने रसोई तक उड़ जाए अपने चूल्हा चौकी तक उड़ जाए और बी चुकी है कि आप सीधा ही बिन खावा, क्योंकि अनाज जो को है वो होश के कुछ 6 महीना बाद में आप बिंग उपयोग करा या फिर साल बाद में आप बिंग उपयोग करा, लेकिन सब्जी इसी है जिकी को आप इनू खेत का माँ टूटे और इनू आपने किया का थाली का माँ बाटी का माँ अपने जाए। तो सब्जी के तौर पर भी आपने ध्यान रखना है कि बिंग माँ जैविक जगह तरीका अपनावा ताकि आपने जिकी सब्जी की गुणवत्ता है बिंग जिकी पौष्टिकता है वह बनी रहे, आपने जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बनो रहे, अपना टाबरिया को अपनो खुद को जीवन है अपने आस पास का जो जीवन है वो साफ सुथरा और स्वस्थ बने रहे, तो जैविक तरीका अपनाना जरूरी है ऐसा। लेकिन आज थाने एक लहसुन और मिर्च को चुका रख है वो तैयार करना वो एक तरीको बता सियाँ, क्योंकि लहसुन और मिर्च को चुका रख है बड़ो प्रभावी मानिज्य है और घरेलू जका जैविक कीटनाशक है बिन तैयार करना का काम आवे, क्योंकि लहसुन और हरी मिर्च और पानी ने आप मिला के इनको जो कोई घोल तैयार करना है जो को फसलों पर लागन वाला जगह रस चूसक जगह कीट है या फिर अपनी जकी सब्जियों की खेती है या फिर बागवानी जकी है बंग में जगह छोटा मोटा कीट लागे बंग वो नियंत्रण जो है वो बढ़िया तरीका शू कर सका। कोई ज़्यादा रासायनिक माँ को नहीं मैनी लहसुन जगह है बे अपने साधारण रूप पर घरे मिले ही है रसोई का माँ मिले अपने खेतों का माँ आप बीजांत करें या लहसुन की करा मिर्च की करा तो पानी जो है वो अपने कन है तो इनको जो घोल है वो तैयार करके अगर आप अपनी फसल का माँ अपनी सब्जियां का माँ कीटनाशक के रूप में करा तो बड़ो फायदो है। और इंग माँ की है कि अगर इंगा जका कीट है बे नष्ट हो जाए ज्या बात करा आप सफेद मक्खी जिकी है वह अपनी फसल का माँ लग गए थ्रिप्स जो को है वो लग गए या फिर जेसिड है पत्ती लपेट जो को सुंडी जो को है कीड़ो जो को है या फिर छोटी इल्ली है इंग अलावा जका दूसरा रस चूसने वाला जका कीट है बे लग गए तो अन्न आप नष्ट कर सका ई अरक्षू लहसुन को और मिर्च को चुका रख तैयार करा पाँ। और इंग लिए अपन के करना है कि लहसुन जो है बे 250 ग्राम अपन लेना है पानी जो है वो 10 लीटर लेना है हरी मिर्च जकी है खारी बा अपन पाइयो 250 ग्राम लेनी है और साबुन को जो घोल है वो 10-15 ग्राम अपना लेना है अगर अपना कन व्यवस्था है तो है ना। इनको फायदो है कि अगर आप साबुन को घोल अगर बिंग मिला दे यानी तो वो जो घोल है वो पत्ता पर या फिर फलों पर चिपकना को काम कर सी तो साबुन को जो घोल है वो मिलाना जरूरी है 10-15 ग्राम। और सहसु पहले अपन के करना है कि लहसुन और हरी मिर्च जकी है बिना आप कुंडी में या फिर कोई और अपने कोई यंत्र है औजार है भी मैं कूट गए पीस गए और बिना बारीक बना लेवा और बिंग में अपन 10 लीटर जो पानी है वो रड़ा देना है मिलाना है यानी कि वो घोल बना देना है 10 लीटर पानी का माँ लहसुन और मिर्च को जो घोल है वो मिला गए और बिना आप 24 घंटा खातर ढक के रख देवा। अगर आप दिन गए तैयार करा तो बिना 24 घंटा हुआ तब तक बिना ढके गए रखा अगर शाम ना करा तो दिन उगे तक 24 घंटा जब तक हुआ जब तक आप बिना रखा और बिहू बाद में कपड़ा छू अच्छी तरह बिना छान लेवा बिहू कपड़ छान कर लेवा ताकि मोटो जो को कचरो है वो कपड़ा को परे जाए और बारीक जो को घोल है वो अपने दूसरा बर्तन का माँ भेड़ो कर लेवा। बिन के करना है कि आपने खेत का माँ ले जाके और बढ़िया तरीके से छिड़काव कर सका और वो जो तैयार घोल करेड़ो है ना वो 1:5 का माँ अपन इंगमा इंगो जो अनुपात है वो रखना है इंगो जो घोल है वो अपन छिड़काव करना है यानी कि अगर 1 लीटर आप अरक लेना है तो बिंग 5 लीटर पानी जो है वो मिलाना है अगर आप 10 लीटर अरक लेना रहा तो बिंग 50 लीटर पानी जो है वो मतलब वो हिसाब जो है वो जोड़ तोड़ करके आप इंगो रखना है और छिड़काव जो को है वो सुबह या शाम का टाइम अपन ने करना है और 5-7 दिन बाद में इंगो जो को दौरान है दोहराव जो है वो अपन करते रहना चाहिए। और लहसुन और मिर्च का अरक का जो लाभ है इंगो जो घोल को लाभ है फायदो जो है वो है कि एक तो अपने लागत को नहीं कोई ज़्यादा पीसो टोको कौन लागे नहीं कोई मिर्च जिकी है बापा खरीद के लिया सका लहसुन जो है वो घर बरता हुआ

बिल्कुल सा थाने कोहिनूर लंगा एंड पार्टी के वाजगमा वो गीत सुनायो और आपने तो बाजार भाव पुगिड़े है और बाजार भाव पुगे है सूरतगढ़ मंडी का। तो सूरतगढ़ मंडी का मैं आपने किया कि कणक का भाव रहा 2385 ले गए 2735 रुपये कुंटल, जो का भाव रहा 2180 रुपये कुंटल, चना का भाव रहा 5301 रुपये कुंटल और सरसों का भाव रहा 6858 ले गए 7330 रुपये कुंटल और ग्वार का भाव रहा 5460 ले गए 5591 रुपया कुंटल। बाजार भाव जका है भी अपना आज एक ही मंडी का पुगता होया और मौसम की जानकारी तो आई है कि तापमान जको है वो 50 डिग्री का आस पास है भी जा सके क्योंकि नौ तपो चाल ला रहे हो। नौ तपे में तो यह समझो कि तंदूर जी तो तपे भी तो ही तप सके हो उसका कठी थोड़ी बहुत छांटा छिड़को जो को है वो मे बिरखा हो जाए तो तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए। लेकिन आपने की है कि बचाव जो को है वो जरूर रखना जरूरी है। सब आपने क्या कि लापरवाही कौन करनी और आपने जो को टाबरियों को जो को बचाव है।

गर्मी शुरू रखना जरूरी है, और बड़ा बुजुर्गों को भी रखना और पशुधन को भी रखना है। कोई भी काम धंधा जगह है भी अपना की है का ठंडा ठंडा नवेड़ ले करो, चाहे घर का है अपने घर की जी माताओं बहना है बाना भी आई बात कैसे, और जका किसान भाई लोग है बाना भी आई बात कैसे, का घर का जगह काम धंधा है भी ठंडा ठंडा नवेड़ करो, और खेत क्यारी का जगह काम धंधा है बे भी दिन उगे जागे या फिर शाम का टाइम में ठंड ठंडा अपन नवेड़ लेना है। क्योंकि दोपहर के टाइम का माँ की है का लू जकी है ताती लाज की है भाई ती ज़्यादा चल है कबा सेद सके ब नुकसान पुगा सके, और पानी की व्यवस्था जकी है वह अपना कन्ने रखनी जरूरी है सा है ना। साधन लेके जब भी आप बाहर निकला नहीं तो के है कि थोड़ा सो अच्छी तरह जाप तो करके निकला, लेकिन ये जका कई दिन गर्मी है ना इन में अपन कह के गामत्र जो को है वो अपन नहीं करना है, बचाव रखना है और ध्यान रखना है कि आप कोई भी शो काम ना करा जबकि वजह से अपनी जकी शरीर को जो तापक्रम है वो कई बार नुकसान कर जाए अपन अपनी जकी शरीर को कोई इतो बड़ो नुकसान हो जाए कि बीस चुकी है का आपनों ज़्यादा पीसो टको ला जाए डॉक्टर कन आप जानो पड़े कई बार, तो आपनों पूरा ध्यान रखना सा। और माता बहना आई कैसे क्या पशुधन को खास करके ध्यान रखे करो, और दिन उगे जो को टेम अपने बारह बाखड़ चौकड़ जो को काम है ना वो ठंडे ठंडा निबेड़े करो है ना। भी बाद का खेत कैरी का जगह काम धंधा भी करना है सा, पर आज को कार्यक्रम इतो ही है भाई। रामेश्वर ने दो आज्ञा, राम राम सा राम राम।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। प्रस्तोता थे रमेश चावरिया। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर आप हमें सुन सकते हैं। DRM बैंड 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए श्रेय घोषाल और कविता सुब्रमण्यम की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है देवदास।

अब सुनिए अगला गीत, आवाजें हैं कनिता कृष्ण और साथियों की, फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, 90 के दशक की फिल्मों की बात हो और उसमें प्यार, दोस्ती, त्याग, एक्शन और संगीत का संगम देखने को मिले तो फिल्म जीत का नाम जरूर लिया जाता है। जी हां, आज हम बात करेंगे वर्ष 1956 में प्रदर्शित हुई सुपरहिट फिल्म जीत। जानेंगे फिल्म के निर्माण से जुड़ी रोचक बातें, कलाकारों की दिलचस्प कहानियां और सुनेंगे इसी फिल्म के मधुर गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत से।

23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई ये फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन किया था भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक राज कंवर ने। जी हां, आज की फिल्म है जीत। इस फिल्म के निर्माता थे साजिद नाडियावाला और संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने। गीतकार थे समीर, जिनके लिखे गीत आज भी हमारी जुबां पर होते हैं। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे सनी देओल, सलमान खान, करिश्मा कपूर और तब्बू।

दोस्तों, फिल्म की कहानी एक ऐसे युवक करण की है जिसकी जिंदगी अपराध और हिंसा के बीच गुजर रही थी। करण का किरदार निभाया था सनी देओल ने, लेकिन उसकी मुलाकात काजल से होती है तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। काजल का किरदार करिश्मा कपूर ने निभाया। दूसरी ओर है राजू यानी सलमान खान, जो एक खुशमिजाज और नेक दिल युवक हैं। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि काजल और राजू एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इसके बाद कहानी प्यार, त्याग और बलिदान के ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है।

दोस्तों, अगर अभिनय की बात करें तो सनी देओल के करण के किरदार में गजब की गंभीरता दिखाई थी। वहीं सलमान खान ने राजू के किरदार में अपनी सहज मुस्कान और मासूमियत से दर्शकों का दिल जीत लिया था। करिश्मा कपूर उस दौर की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में थी और फिल्म में उनकी उपस्थिति ने कहानी को भावनात्मक गहराई दी थी। तबू का किरदार भले छोटा था, लेकिन उन्होंने अपनी छाप बेहद बेहतरीन तरीके से छोड़ी थी। फिल्म में अमरीश पुरी ने खलनायक के रूप में शानदार अभिनय किया था। दोस्तों, 90 के दशक में जब कैसेट का दौर था, तब नदीम श्रवण का संगीत युवाओं की पहली पसंद हुआ करता था। यह फिल्म जीत इसका शानदार उदाहरण है। गीतकार समीर के सरल शब्दों में ऐसे भाव लिखे कि गीत सीधे दिल तक पहुंच गए। गायकों में कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों ने गीतों को और भी यादगार बना दिया था।

दोस्तों, कम ही लोग जानते होंगे कि इस फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण केवल एक्शन नहीं था, बल्कि इस फिल्म का भावनात्मक अंत था। फिल्म के क्लाइमैक्स के कारण ही दर्शकों की आंखें नम हो गई थी। यही कारण है कि रिलीज के लगभग 3 दशक बाद भी ये फिल्म जीत 90 के दशक की यादगार फिल्मों में शामिल की जाती है। वर्ष 1996 की यादगार फिल्म जीत की कहानी, उसके कलाकारों और उससे जुड़े कई रोचक किस्से। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी गीत के साथ पुष्पेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी अब कार्यक्रम सुन रहे थे एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने किया जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज, जियोवानी पेरिकार्ड को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ओशोनिया चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कल से जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित किया जाएगा। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां वियतनाम में आज भी भारतीय कुश्ती पहलवानों का जो है लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। वियतनाम के दनांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीते। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे ने यलमन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में विक्की ने शिरजोद पोयोनो को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। सीधे चलते अब चर्चा करते हैं फ्रेंच ओपन पर। रोलैंड गॉरेस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने प्रतियोगिता का आगाज जीत के साथ किया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच के खिलाड़ी जियोवानी एम्पेट्सी पेरिकार्ड को हराकर पेरिस में दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।
1: 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने लगातार 82वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोपेस के साथ साझा किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जोकोविच का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रिकॉर्ड 80 जीत और सिर्फ 2 हार का हो गया है। नोवाक जोकोविच 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला मैच नहीं हारे हैं। पेरिस में फ्रेंच खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड 13-0 है। पहले सेट में नोवाक जोकोविच को पेरिकार्ड की शानदार सर्विस के सामने एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। फिर फ्रेंच खिलाड़ी ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी और सेट जीत लिया। इसके साथ ही वह 14 साल में पेरिस में जोकोविच से एक सेट जीतने वाले पहले फ्रेंच खिलाड़ी बने। इसके बाद जोकोविच ने पेरिकार्ड को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 2 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 5-7, 7-5, 6-1 और 6-4 से जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रतियोगिता में जहां नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे, वहीं कार्लोस अल्कराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी भले ही इस प्रतियोगिता में सीमित हो, लेकिन आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी और जूनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 के लिए 9 पुरस्कार खेल के क्षेत्र में वितरित किए गए। टेनिस में विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पद्मश्री पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को दिया गया। वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और हॉकी कोच बलदेव सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जबकि भगवान दास रैकवार को मार्शल आर्ट्स में और के पजनीवेल को सिलंबम में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुश्ती कोच व्लादिमीर मेस्त्रिस्ली को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
1: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। बात कर लेते ओशेनिया चैंपियनशिप में, जहां कल भारत ने कई पदक अपने नाम किए। जापान में आईएयू 24 एच एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते, वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में क्लीन स्वीप किया।
2: भारतीय पुरुष टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा किया और कुल 815 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 23 से 24 मई तक 24 घंटे की कड़ी रेसिंग में टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। अमर सिंह देवंदा ने करीब 283 किलोमीटर की शानदार दूरी के लिए 226 लैप पूरे करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया। मेजबान देश जापान ने मासाकी मोतो की अगुवाई में टीम स्पर्धा में सिल्वर अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा किया। महिला वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। जापान की मीहो नाकाता ने 261 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल 20 किलोमीटर के बड़े अंतर से जीता। उनके प्रदर्शन की वजह से जापान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक अपने नाम किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
0: टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करते हुए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान भी बढ़ाया। अब सीधे ले चलते आपको झारखंड की राजधानी, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। आज का दिन भी रिकॉर्ड और पदकों के लिहाज से बेहद शानदार रहा है। स्टेडियम में मौजूद हमारी संवाददाता महवीश रहमान सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महवीश
3: जी,
0: फेडरेशन कप के चौथे दिन आज मैदान पर कैसा रोमांच देखने को मिला? हमारे श्रोताओं को आज के मुख्य परिणामों के बारे में बताइए।
3: जी प्रशांत, आज चौथे दिन मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आज कई राज्यों के स्टार एथलीटों ने पदक जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया, जिससे दर्शकों को बेहद करीबी और रोमांचक मैच देखने को मिले। आज की सबसे बड़ी खबर दौड़ और हाई जंप स्पर्धाओं से आ रही है, जहां नए विजेताओं ने बाजी मारी है।
0: जी बिल्कुल, तो हमारे खेल प्रेमियों को ये भी बताइए कि आज महिलाओं और पुरुषों की इन मुख्य स्पर्धाओं में किसने बाजी मारी है।
3: आज महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सीमा ने कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। इसके अलावा महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर विथाया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
0: महवीश, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है, तो इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 12 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।

0: तो आज के इस शानदार प्रदर्शन का आगे क्या असर देखने को मिल रहा है?
1: जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलेंगे। तो प्रतियोगिता के शुरुआती दिन में गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके और तेजस्वी शंकर ने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे, उसका उत्साह आज चौथे दिन भी खिलाड़ियों में साफ दिखा। आज विधायक रामराज, ख्याति माथुर, सीमा और शिवाजी जैसे खिलाड़ियों ने उनकी जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले कल पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। काउंटडाउन नियम से देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तो हमें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए देश को कई मेडल की उम्मीदें अब जाग गई हैं।
0: जी महवेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रतियोगिता पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 26 से 31 मई के बीच जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चयन समिति ने 22 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में ओलंपिक में दो पदक अपने नाम कर चुकी मनु भाकर और उनकी साथी ओलंपियन और विश्व चैंपियन पदक विजेता ईशा सिंह शामिल हैं। एक नज़र भारतीय निशानेबाजों पर।
2: इस प्रतियोगिता की शुरुआत 25 मीटर पिस्टल विमेन्स प्रेसिजन स्टेज इवेंट से होगी। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग का क्वालिफिकेशन राउंड और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का एलिमिनेशन राउंड भी शुरू होगा, जिसके बाद 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। पहले दिन दो फाइनल मुकाबले होंगे। इन इवेंट्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और 10 मीटर एयर राइफल मेंस शामिल है। इस विशेष कप के लिए 80 देशों के कुल 696 एथलीट्स ने दावेदारी पेश की है। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। दो बार की ओलंपियन और पूर्व एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत म्यूनिख में सबसे सीनियर भारतीय निशानेबाज होंगी। अन्य अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अनिश भानवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एलाविनिल वलारिविन, वर्ल्ड कप फाइनल विजेता रुचि सिंह और मौजूदा म्यूनिख मिक्स टीम चैंपियन अर्जुन बबूता शामिल है। भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वालों में पुणे के 22 वर्षीय साक्षी पाड़ेकर है। दूसरी तरफ 18 वर्षीय सूरज शर्मा म्यूनिख में भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे युवा है। वहीं 23 वर्षीय अजेंद्र सिंह चौहान ने घरेलू प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है। म्यूनिख में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के साथ भारत के लिए अपने पहले ओलंपिक इवेंट में हिस्सा लेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: नॉर्वे के ओस्लो में आज से शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा की मौजूदगी में भारतीय दल टूर्नामेंट में खिताब के अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। बात आईपीएल पर, आईपीएल के लीग मुकाबलों के कल समापन के साथ ही प्लेऑफ की चार टीम फाइनल हो गई हैं। प्रतियोगिता में अब तक कई रिकॉर्ड्स बने और कई ध्वस्त हुए। जानते हैं अब तक खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
3: अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला क्वालिफायर वन में दूसरे स्थान पर काबिज गुजरात टाइटन से 26 मई को धर्मशाला में होगा, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एलिमिनेटर में 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। वहीं क्वालिफायर वन में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम का मुकाबला 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी। फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हम ऑरेंज कैप की रेस की बात करें तो वहां साई सुदर्शन 638 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं 616 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे, हेनरी क्लासन 606 रन के साथ तीसरे और केएल राहुल 594 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 583 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप के लिए भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट और बेहतर इकोनॉमी के साथ पहले, कासिगो रबाडा 24 विकेट के साथ दूसरे, जोफ्रा आर्चर और अंशुल काम्बोज 21 विकेटों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी

और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के

0: व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
4: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: Against the assessment of
0: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ. एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली

मीडियम वेव 326.79 मीटर 18918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं चंदन दास।

अभी आप कार्यक्रम सुगम संगीत सुन रहे थे। आज के कलाकार थे चंदन दास। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की और बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीज़ों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सब के बारे में वहां पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहां पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे

0: मुंबई में या महाराष्ट्र में जैसे आपने मुझसे कहा
1: जी,
0: तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
1: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरेटिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
1: जी,
0: इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू
1: भी, ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से का जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब है, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लैट्रिन बाथरूम बिठाने के लिए भी
1: जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही,
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल।

0: आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनाच्या तहत पुष्कळशे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत. तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल. अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूँगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है. वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देख के परिचय पत्र दे के ले सकते हैं. तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी. और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं. उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा.
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी, आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी. जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, विद ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता. दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ. तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में. चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएँ हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है. इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी.
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी.
0: जी इसका इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो.
0: जी, और जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी.
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल. ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुँच बना सकते हैं. मेरा इसमें और ऐड कर रहा था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चक्ष नहीं सकते हैं, तो उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पा रही है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके. जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है. ये भी हो सकता है कि कुछ 10% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं. जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो.
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए. हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं. तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं. वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है. तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे.
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का. मुनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है.
0: मैं इसमें एक

0: आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज़्यादा लोगों तक अगर हम हों तो पहुंच बना सकें। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके ऐप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ, वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी, अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम,
0: वृद्धाश्रम से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स इनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीइंग के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
1: जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान है, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 14567 14567, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप

0: नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।
1: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
0: जी धन्यवाद
1: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
2: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 14567 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
0: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 14567 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
2: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए कि पब्लिक लाइव हुए हैं, तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
0: जी
2: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग ज़रूर प्रयास कर रहे हैं।
0: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएँ दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
2: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है, तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
0: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी, रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
0: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
0: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
2: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है, जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है, उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
0: जी, तो इसमें जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की, तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
2: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं, वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज़्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं, पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरेक्ट के होने हैं, या जो ट्रेनिंग करवानी है, या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी IEC मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट

0: प्रोवाइड करता है।
1: जी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: आपका
1: सवाल। हाँ जी,
2: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है, पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उनका स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी। राजेश नेमा जी। जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
0: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
0: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफ़ी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इसी से हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पर जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। तो पहले सुनिए सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान है।
1: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
2: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफर जब मैं 6th क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइगर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
1: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
2: जी,
1: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
2: सर, मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को, देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए हैं, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं। सर,
1: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
2: जी जी जी।
1: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
2: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में वॉलीबॉल फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े, पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा ना कोई ना कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे वो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को अच्छा लगता था। सर,
1: पहली बार सॉफ्ट बॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज आप सॉफ्ट बॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
2: सर, मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं हमारी टीम ने पार्टिसिपेंस किया था हमने, तो वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, जो मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था, जब वहां गया तो सभी जिलों की टीमें आई और वहां पर इतना अच्छा प्रदर्शन, हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहां देखा गया तो कि बॉल स्विंग हो रही है, इधर जा रही है, और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो थोड़ी खुशी भी हुई। तो पहला मेरा टूर्नामेंट था, उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया
1: जी।
2: जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने 9 सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरा मैंने बीए में एडमिशन

0: झालावाड़ कॉलेज में
1: जी
0: तुम पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था शॉर्ट बॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही, फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: पहली बार दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे
1: जी,
0: और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी।
1: जी
0: तो सर मेरे को बहुत उसी से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला जब हमारा केरला से मैच था, तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे मेड विनर हुए हम।
1: जी
0: उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित तो हुआ था तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी सर। फिर सर जैसे बढ़ता जाता तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
1: जी, देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले, आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्टबॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
0: सर सॉफ्टबॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
1: जी जी जी।
0: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है। पहले एक्चुअली में क्या है, बेस सॉफ्टबॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में, तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया। तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में मैं नेशनल खेलने गया, पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया। उसके बाद हम भिलाई में गए और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
1: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जाना चाहे हाथ लगे हैं और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले, आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्टबॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
0: सर सॉफ्टबॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
1: जी जी जी।
0: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है। पहले एक्चुअली में क्या है, बेस सॉफ्टबॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में, तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया। तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में मैं नेशनल खेलने गया, पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया। उसके बाद हम भिलाई में गए और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
1: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
0: समानताएं तो इसमें सर बहुत सी है, एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर 9 खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होमर रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट के साइज का बॉल होता है। दूसरा इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर, और सब कुछ सेम है सर। तो मजे आए कॉमन गेम, तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर।
1: जी, जी।
0: बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
1: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
0: सर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है, इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई तो उसमें हम नहीं जा पाए।
1: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
0: सर अभी जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया,
1: जी जी जी,
0: तो उसमें जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2-3 नेशनल खेला हुआ है,
1: जी जी,
0: तो उनके लिए 5 चैंपियन एथलेटिक के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले की डिमांड को देखते हुए उसके तहत आप लोगों को गेम मिला था शॉर्ट बॉल। तो उसमें पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो फिर को वहां पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
1: जी जी जी।
0: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में बच्चों से। तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं, अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सर मेहनत करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं, देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
1: और इस समय जूनियर, सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां, यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्टबॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
0: सर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचोमेंट बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
1: जी जी
0: अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने वहाँ कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे भी, हमारे एक मयंक नागर है लड़का, तो वो नेशनल खेल के आया, झालावाड़ में पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है अभी, जैसे गर्मियां बड़ी छुट्टियां लगी तो बच्चे आ रहे हैं।
1: और कौन सा फेडरेशन या संस्था? सॉफ्टबॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है।
0: भारतीय सॉफ्टबॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है
1: जी, जी,
0: और इसके समय समय पर सीनियर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिताएं का आयोजन करवाते हैं हर साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हर अभी तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट नेशनल नहीं गया जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
1: झालावाड़ के लिए वास्तव में यह गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्ट बॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं
0: जी।
1: प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
0: सर, किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने उसके प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब ऑफ द स्कूल तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं तो हम पहले उसको रनिंग फिर एक्सरसाइज स्पेसिफिक एक्सरसाइज नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसको डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है राजस्थान में, हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें
1: जी,
0: भी।
1: जी, जी। और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग हिटिंग फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग हिटिंग फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
0: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स
1: जी, जी।
0: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट

0: ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट्रोस्ट्रेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी इसमें योजना के तहत ही हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनआइस करने गया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको
1: जी जी
0: हम
1: जी
0: बच्चों पर अभी धीरे धीरे जनरेट कर रहे हैं। जैसे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है वो उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और
1: जी जी
0: सबसे
1: जी
0: इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। क्योंकि अगर
1: जी
0: आपकी
1: जी
0: पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा।
1: जी
0: तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए। पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
1: जी जी जी सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी नई नई आई है, तो
0: जी
1: कोच की हैसियत से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
0: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली में नहीं, तो क्या अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी, बट वो क्या है जंप से नहीं होती थी, खड़े
1: जी
0: खड़े
1: हाँ जी
0: पिचिंग
1: हाँ
0: करना होता था।
1: जी
0: तो अभी इंडिया में जैसे नई आई जंप करके, जैसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते हैं, पीछे रखे तो जंप करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। जैसे उनको बताते हैं, जैसे
1: जी
0: बेसिक्स
1: जी जी
0: हमें सिखाया गया है कि आपको जैसे पॉकेट, जैसे लोअर पैन थे उसके पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती, ग्रिप्स वगैरह जो उसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस ग्रिप्स
1: जी जी
0: पकड़ के।
1: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
0: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स हैं। ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके, स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीज़ें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू, एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें ऐसे कहता हूँ, कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रही होगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि वो बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ हमने तुम्हें कम सिखाया, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आपको
1: जी
0: सबको पता है
1: जी
0: कैसा क्या होता है।
1: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं?
0: हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से हुटिंग वगैरह होती है तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीज़ों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ। तो मैं इसमें इनको मेडिटेशन करवाता हूँ, दूसरा इनका फोकस ग्राउंड में रहे, तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल, जो अपन हुटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवेशन आता है। और गेम
1: जी
0: ऐसा
1: जी जी
0: गेम है ये, तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट में क्या होता है कि अभी बॉल पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें पर्टिकुलर जो 9 प्लेयर 9 प्लेयर्स इन होते हैं, तो कभी भी किसी के पास बोल तो एक्टिवेशन होती है। और दूसरा हम फोकस के लिए बहुत सारी ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल्स जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100 150 बॉल से लग कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो इनका फोकस बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
1: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्ट बॉल में कई बार नेशनल खेला है,
0: जी
1: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपका रहे?
0: सर, मेरे करियर के में सर सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला, तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा अभी जीतने के बाद। बट एक हमारा मैच था 2017 में, हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच, ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था, उस मैच में लास्ट इनिंग में हम थोड़ा 4 5 से हम उसमें बिछड़ गए थे, हार गए थे, तो
1: जी
0: उसमें
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद मेरे को मोटिवेशन मिला। हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया, थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम,
1: जी
0: इतना
1: जी जी
0: खेलने इतना टाइम था, लंबा मैच चला, फिर हम हारे। तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं अब अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमें कमियाँ रह गई तो उस पर मेहनत करिए, तो वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन मिला। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था, कि इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग,
1: जी जी
0: झालावाड़ और
1: जी
0: भरतपुर के मैच को देखने इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
1: जी जी जी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमजोर नजर आती है, तो क्या ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमजोर सा रहता है?
0: मेरे मेजर जनरल जानकारी इस हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है, हमारा इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है, पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली में, पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है, उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: लंबी प्रोसेस से आते हैं अच्छी इक्विपमेंट्स। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं पाया, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
1: और फिलहाल हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं,
0: जी
1: और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहाँ पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
0: सर, इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है एक्चुअली में, गेम बहुत अच्छा है। दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है, तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य है। किस किस

0: चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहाँ थ्रो करना है। अब ऐसा नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है, किस बेस पे
1: जी
0: थ्रो
1: जी
0: करना है।
1: जी जी
0: थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग हटके हैं, थोड़ा रूल्स तो वो भी हैं, और ठीक है अपना गेम है तो। और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन, जो नो प्लेयर खेलते हैं हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसके पास बॉल आ रही है, अच्छे से
1: जी
0: बॉल
1: जी
0: पहुंच
1: जी
0: पा रही है।
1: विशाल, आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहाँ तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
0: सर मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में, अगर मैं कोच बनता हूँ तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा। आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूँ कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकालें हम, साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे। साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूं मैं मेरे कोच ललित सर हैं, कृपा शंकर सर जो खेल अधिकारी, उनका मेरे सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे
1: जी
0: पे,
1: जी जी
0: साथ साथ विनोद सर है हमारे, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग, मेरे से ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूँ मैं इनकी बदौलत हूँ तो ये लोग चाहते हैं। तो साथ साथ ये भी आज जिस तरीके से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूँ, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
1: विशाल, आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाएं जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान था। लीजिए अब सुनिए गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात गोल्फ प्लेयर शिक्षा जैन से करवा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में।
4: शिक्षा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
5: थैंक यू।
4: शिक्षा, आप अपने बारे में बताइए।
5: मैं जयपुर से हूँ और मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल गोल्फर हूँ, और मेरी मम्मी का नाम मेघा जैन है और मेरे पापा का नाम सनी जैन है।
4: आप गोल्फ खेलती हैं, आपके टी शर्ट के ऊपर जो इंडिया का फ्लैग है वो भी मुझे नजर आ रहा है। निश्चित रूप से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे बच्चे जब आगे आकर खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को और प्रेरणा मिलती है। शिक्षा, आप बताइए कि गोल्फ की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई?
5: जब मैं अराउंड 8 ईयर्स की थी तो मेरे पापा के एक फ्रेंड ने हमें बोला था कि हमें एक बार गोल्फ ट्राई करना चाहिए। उससे पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्फ ट्राई किया मुझे धीरे धीरे गोल्फ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने इन 1 ईयर मैचेस खेलने स्टार्ट किए और मैं मैचेस जीतने लगी, और मुझे गोल्फ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, इसलिए तब से मैंने गोल्फ स्टार्ट किया है।
4: बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने मेडल्स भी जीते हैं, आपने कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक?
5: अभी तक मैंने अप्रोक्स 100 अराउंड मेडल्स ट्रॉफीज जीती है।
4: ओके, और आपकी रैंकिंग क्या है, श्रोताओं को बताएं?
5: मेरी रैंकिंग इंडिया में अपनी एज कैटेगरी में सेकंड है, और ओवरऑल इंडिया में नेशनल्स में मेरी रैंकिंग इन एवरी कैटेगरी लाइक सीनियर्स में मेरी 10th है, और वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अभी 1600 है।
4: वेरी नाइस। आपने बहुत ही छोटी उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया, और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको हम अगर थोड़ा बताना चाहें कि गोल्फ कैसे खेलते हैं, गोल्फ में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए।
5: सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है गोल्फ के बारे में वो है कि गोल्फ में 14 तरह के क्लब्स होते हैं, 14 तरह के क्लब्स होते हैं, और हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है।
4: क्लब का मतलब हम बैट से समझ सकते हैं?
5: हाँ, काइंड ऑफ।
4: जिस तरह से बैट से बॉल को हिट किया जाता है उसी
5: हाँ
4: तरह से जो गोल्फ का जो बल्ला होता है उसको क्लब कहते हैं।
5: हाँ वो काफी डिफरेंट होता है। हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है, लाइक बंकर्स भी होते हैं, मिट्टी होती है, अगर आपको उसमें से मारना है तो आपका क्लब डिफरेंट होएगा, अगर ग्रीन होती है, अगर आपको ग्रीन के पास में से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होएगा, अगर आपको ग्रीन के ऊपर से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होता है, जैसे उसको पटर बोलते हैं, ग्रीन के पास वाले को सैंडविच बोलते हैं। अगर बंकर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कुछ ग्रीन के पास होते हैं जिनके लिए लॉब वेज यूज होता है, कुछ ग्रीन से काफी दूर होते हैं उनका डिफरेंट टाइप होता है, और जैसे कुछ नॉर्मली फेयरवेज होते हैं और ग्रीन में डिस्टेंस होता है तो उनके अलग होते हैं, अगर आप रफ में से मार रहे हो तो उनके अलग होते हैं, आपको लो शॉट मारना है उसके लिए अलग है, आपको हाई शॉट मारना है उसके लिए अलग,
4: तो बहुत सारी
5: बहुत
4: टेक्निकल
5: सारी।

0: ये इसमें
1: हमें ध्यान रखनी होती है। इसके साथ जब हम गोल्फ खेलते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है?
2: बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे पहले मैंने बोला डिफरेंट क्लब्स होते हैं, तो जैसे मान लो आपके ग्रीन और आपके शॉर्टन अराउंड 130 यार्ड्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो अब आपको उसके लिए पहले हवा चेक करनी पड़ेगी कि हवा हेड है टेल है। हेड मतलब कि अगर हवा पीछे की साइड आ रही है, टेल मतलब अगर हवा आगे लेके जा रही है। तो हवा का भी एक रोल होता है, अगर वो लेफ्ट टू राइट है या फिर वो राइट टू लेफ्ट है, तो उन सब का ध्यान देना पड़ता है। और फिर दूसरा वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, लाइक आपके खुद की एडेजेस होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना आइडिया तो रहता है कि आप कहाँ इतना क्लब इतना जाता है। ये चैलेंजेस, फिर पटिंग, चिपिंग, बंकर जैसे मैंने बताया, मिट्टी से, सैंड से, नियर ग्रीन या फिर ग्रीन पे। और फिर अराउंड ये मैच 6 आवर्स चलते है, एक मैच 18 होल्स का, तो वही होता है आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है।
1: अच्छा, जैसे धूप में खेलना होता है तो उसमें आप किस तरह से मैनेज करते हैं?
2: तो लाइक
1: 6 आवर्स तो काफी लंबा टाइम हो गया।
2: हाँ, तो जैसे बहुत ज्यादा समर्स होते हैं, लाइक अराउंड 35-40 डिग्रीज हम यूजुअली खेलते हैं, तो वो अराउंड पीक टाइम होता है हमारा, जनरली 11 to 4 o'clock होता है। सो लाइक फुल पीक टाइम, तो उसमें हम लाइक वी हैव अम्ब्रेलाज होते हैं, तो हमारी जो ट्रॉलीज होती है उन पे अम्ब्रेला का स्टैंड बना हुआ होता है, या फिर हम जब वॉक करते हैं शॉर्ट्स के बीच में हम अम्ब्रेला ले लेते हैं। और फिर हम बहुत सारी चीजें जैसे वाटर, इलेक्ट्रोल्स, हमें वो सब कैरी करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है और हमें बीच में लाइक रेस्ट नहीं मिलता है। आपको जो भी कंज्यूम करना है तो वो आपको चलते चलते ही कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोल हो गए, और बीच में जो होल्स होते हैं तो फिर मम्मा या कोई भी बीच में लाइक नींबू पानी या फिर कोई तरह का जूस दे देते हैं।
1: तो मम्मा आपको सपोर्ट करती हैं गेम में?
2: हाँ, काफी।
1: अच्छा,
2: मम्मा पापा दोनों का ही बहुत ज्यादा रोल है।
1: अच्छा, जैसा आपने बताया कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है, तो फिटनेस के लिए आप क्या स्पेशल करती हैं, क्या ध्यान रखती हैं?
2: फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गोल्फ में। तो मेरे कोच है सागर सर, वो चंडीगढ़ से है, तो मैं चंडीगढ़ जाती हूँ कोचिंग लेने उनसे। वो लाइक क्रिकेटर्स जैसे युवराज, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उन सबको भी वही ट्रेन करते हैं फिटनेस में, एंड वो मुझे कार्ड दे देते हैं, फिर मैं जयपुर आके उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ।
1: जैसे बहुत से बच्चे भी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कौन से रूटीन को आप फिटनेस के लिए फॉलो करती हैं जिससे वो भी सीख सकें या कोई प्रेरणा ले सकें?
2: मैं गोल्फ स्पेसिफिक रूटीन भी करती हूँ और नॉर्मल वर्कआउट रूटीन भी होता है मेरा, मोस्टली गोल्फ स्पेसिफिक होता है, लाइक कोर, शोल्डर्स, लेग्स, बैक, क्योंकि गोल्फ में सबसे ज्यादा रोल कोर, बैक, शोल्डर्स, लेग्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गोल स्पेसिफिक भी करूँ और हर बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ।
1: इसमें आप इतना समय देती हैं तो साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं?
2: मैं जनरली जयपुर में मैं उतना नहीं रहती हूँ बिकॉज मेरे नेशनल्स चलते हैं, तो मैं अराउंड 10 डेज ही रहती हूँ जयपुर में इन अ मंथ, बट जब भी होता है तब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ। सो हाँ,
1: तो आपको तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है।
2: हाँ, पढ़ाई में, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है, मैं काफ़ी मेरा सिलेबस छूट जाता है, पर जैसे अभी एग्जाम्स है तो वो 1 मंथ काफ़ी सारी पढ़ाई एक साथ करनी पड़ी थी।
1: स्पोर्ट्स से हमें वो कंसंट्रेशन की पावर मिलती है जिससे हम, हाँ, डिसिप्लिन सिखाता है स्पोर्ट्स हमें, तो हम कम समय में भी क्यूरिकुलम को कवर कर सकते हैं।
2: हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी स्पोर्ट्स में होना बहुत जरूरी है, सो वो सब स्पोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा सिखाता है।
1: गोल्फ की बात करें, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप फॉलो करती हैं या जिनसे आप प्रेरित होती हैं?
2: सबसे ज्यादा मैं टाइगर वुड्स, रॉरी मैकलरॉय और स्कॉटी शेफलर। सो स्कॉटी शेफलर भी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जिस तरह रॉरी मैकलरॉय, उनका जो बॉल स्ट्राइकिंग का जो वे है, उनका जो फोकस है, कि जिस तरह वो मैचेस खेलते हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, वो सब मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। इंडिया के प्लेयर्स शुभांकर शर्मा एंड आदित्य अशोक दी, दोनों मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, और अनिर्बान लहरी सर, तीनों मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं।
1: कौन कौन से कंट्रीज में आपने खेला और इंडिया को रिप्रेजेंट किया?
2: मैंने इंडिया को थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। और मैंने थाईलैंड में 3 to 4 टूर्नामेंट्स खेले, थाईलैंड में लाइक डिफरेंट सिटीज जैसे चियांग में, बैंकॉक और हुआही, इन तरह की कंट्री सिटीज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है।
1: इसके अलावा भी कोई आपकी हॉबीज हैं?
2: जनरली तो उतना नहीं टाइम मिल पाता हॉबीज को, बट मेरी हॉबीज है डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लॉन टेनिस।
1: करियर अपॉर्चुनिटीज

0: को आप किस तरह से देखती हैं और अपने आप को आप कहां देखती हैं आज के टाइम में?
1: मेरे को इंडिया के लिए गोल्फ में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है और मैं वही अपने आप को स्टैंड करती हूँ और मैं वही चाहती हूँ।
0: जब लक्ष्य का हमें पता होता है और बहुत ही छोटी उम्र में हमारा प्रयास भी उसी दिशा में होता है। चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो श्रोता हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज के तौर पे कहना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगी कि आपका जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का बैडमिंटन में, किसी का गोल्फ में, किसी का लॉन्ग टेनिस में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वही स्पोर्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बिना मन से करोगे तो वो चीज नहीं हो सकती। गोल्फ मेरे लिए सब कुछ हो चुका है तो हाँ।
0: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ यही हैं कि आप गोल्फ में आगे से आगे बढ़ते जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें।
1: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र जयपुर का अंशदान था। अब हमें आज्ञा दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: खेल जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया।
1: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए जावेद अली की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है जोधा अकबर।

0: अब सुनिए सोनू निगम की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है चॉकलेट।
1: Come on, girl. Be the beat.

0: darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever.
1: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे, हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक

0: डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.